107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही

0: में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।

0: सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

6:15 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर आप सुनेंगे 6:45 पर श्री रामचरित मानस गान। आप सुनेंगे 7:20 पर कलाकार होंगे अनुराधा पोडवाल और संगीत सतीश भाटिया का। नमस्कार चूरू ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर। 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज। गांधी चर्चा आप सुन पाएंगे 8:30 पर। 9:00 श्रोताओं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। देशगान का समय रहेगा 9:10।

साहित्य सुगंध कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे राजस्थानी कविता पाठ कवि श्री देवेंद्र जोशी से। बाल विहार आप सुनेंगे 9:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, समय रहेगा 10:00। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे 11:00। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू आप सुन पाएंगे 11:05 पर। इस कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे कुंज बिहारी बिरमी वाला, तकनीकी सहयोग जय सिंह ड्यूडी और गुलजारी लाल मीना का, प्रस्तुति अमित कुमार सैनी की और संयोजक होंगे विनोद कुमार हल्किया। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर बहार आप सुन पाएंगे 12:00। सुजान सिंह खींची और पार्टी की लोक रचनाएं आप सुन पाएंगे कार्यक्रम माटी के स्वर में, समय रहेगा 12:30। 1:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से सुन पाएंगे। महिला जगत, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:05 पर। 2:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने, ये आप सुन पाएंगे 2:30 पर।

शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ ही हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा। 7 बजे साथियों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। 8 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आप सुनेंगे नए और पुराने रोमांटिक सॉन्ग्स। 8:45 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:30 पर। 10 बजे साथियों आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

साथियों, हम सब इस ब्रह्मांड में एक यात्रा पर हैं, लेकिन ये यात्रा कहाँ की है, बाहर की या भीतर की। हम अक्सर जीवन का अर्थ बाहरी दुनिया की उपलब्धियों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब भीतर का दिया नहीं जलता, बाहर उजाला बेमानी है। आज हम जीवन के उसी सबसे गहरे सत्य पर बात करेंगे कि कैसे नैतिक मूल्यों में ही निहित है जीवन का सार।

नियमावली है, लेकिन दर्शन की नजर से देखें तो नैतिकता कोई नियम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता है। हम यूनानी दार्शनिक सुकरात की बात करें तो उन्होंने लिखा कि एक अनजाने और अनपरखे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। नैतिक मूल्य जैसे सत्य, करुणा और न्याय, यह कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें बाहर से ओढ़ा जाए। यह तो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। जब आप किसी के प्रति करुणा महसूस करते हैं तो वास्तव में आप अपनी आत्मा का विस्तार कर रहे होते हैं। जीवन का सार संचय करने में नहीं बल्कि विसर्जन करने में है।

उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर विचार है, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी जो मुझ में है वही तुझ में है। जब एक इंसान इस दार्शनिक सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। कबीरदास जी ने भी बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जी हाँ, यह प्रेम और सहानु

आज के इस आधुनिक युग में आधुनिक मनुष्य का एक सबसे बड़े द्वंद्व में जी रहा है। हमारे पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक खो गया है। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन पड़ोसी के दिल तक जाने का रास्ता भूल गए हैं। यह जो हमारे भीतर एक खालीपन है, इसे कोई भौतिक सुख नहीं भर सकता। साथियों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। आज हम अपने ही अहंकार और लालच की जंजीरों में बंधे हैं। इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी सिर्फ नैतिक मूल्यों के ही पास है। जब हम ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जीते हैं, तो हम वास्तव में मुक्त होते हैं। अभी श्रोता सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज में ये प्यारी सी भक्ति रचना।

रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज में ये प्यारी सी भक्ति रचना आपने सुनी। रविंद्र जैन, मीनल जैन और निशा जैन की आवाजों में सुनिए प्यारा सा भजन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में भजन। अब आपको सुनवाते हैं ओम व्यास और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा भजन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम की आगाज में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज को। फिल्म का नाम है कटी पतंग। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं और आरडी बर्मन ने संगीत दिया है।

आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं किस्मत फिल्म का गीत। एसएच बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत में। शराबी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़, अनजान की शब्द रचना और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं डोन फिल्म का गीत। अनजान की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म का गीत, जावेद अख्तर की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म का ये गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। एसडी बर्मन ने तर्ज बनाई है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना और एसडी बर्मन का संगीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल, संगीत है सतीश भाटिया का।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार अनुराधा पोड़वाल और संगीत सतीश भाटिया का था। एपिसोड था 378 378वां। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।
1: बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। स्वागत है कार्यक्रम में आपका और मैं आज आपके साथ रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी। तो स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आज है 17 मई यानी कि विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। एक जमाना था जब चिट्ठी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे और आज एक क्लिक किया और बात सीधे दुनिया के दूसरे कोने में। कबूतर से लेकर 5G तक का ये सफर सच में कमाल है ना।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस तकनीक ने हम सबको दूर होते हुए भी पास लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाने के साथ साथ थोड़ा वक्त अपनों के साथ बैठकर चाय पीने के लिए भी निकालना चाहिए।

दोस्तों, जैसा हम बात कर रहे थे, आज विश्व दूरसंचार दिवस है। आज का दिन उस अदृश्य तागों का जश्न मनाने का है जिसने पूरी दुनिया को एक माला में पिरो दिया। साल 2026 में इस दिन की बेहद खास थीम रखी गई है, डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। जी हाँ, सीधा सा मतलब हमारी इंटरनेट और फोन लाइन सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त असली लाइफलाइन, जान बचाने वाली डोरी है। चाहे तूफान हो या कोई आपदा, ये नेटवर्क ही हमें अपनों से जोड़े रखता है। इस लाइफलाइन को मजबूत बनाने का वादा करते हैं साथियों, एक ऐसी विचार हम रखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे इस लाइफलाइन को।

दूर संचार के उस पुराने दौर को याद करने के लिए साथियों गाना सुनिए जो परफेक्ट है, जब महीनों बाद अपनों की चिट्ठी घर पहुंचती थी और आंखों में आंसू आ जाते थे।

साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो अमीर हो या गरीब सबको रोज बिल्कुल बराबर मिलती है, यानी वक्त।

साथियों, हम अक्सर कहते हैं ना, यार टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन सच कहूँ तो टाइम कम नहीं होता, हमारा मैनेजमेंट कम होता है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब 24 घंटे कोल्हू की बेल की तरह काम करना नहीं है साथियों, बल्कि इसका मतलब है सही समय पर सही काम करना, ताकि आप अपने परिवार और खुद के लिए वक्त निकाल सकें। आज के दिन से एक टू डू लिस्ट बनाइए और सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग के भूत को थोड़ा आराम दीजिए। चलिए अपने समय की कीमत पहचानते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लेकिन साथ में हम बात कर लेते हैं साथियों समय प्रबंधन। जो सबसे बड़ा उसका सीक्रेट है ना, वो है ना कहना सीखना। हर उस काम को ना कहिए जो आपका कीमती वक्त बर्बाद करता हो।

साथियों, हम बिजी तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम प्रोडक्टिव भी हैं? सिर्फ उलझे रहना उत्पादकता नहीं है। तो चलिए, आज मैं आपको देता हूँ समय बचाने और काम को रफ्तार देने के 3 जादुई क्विक टिप्स। पहला, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन 3 जरूरी कामों को कागज पर लिख लें और जो आज आपको हर हाल में पूरे करने हैं। दूसरे टिप की बात करें तो एक पोमोडोरो तकनीक होती है, यानी लगातार मत छूटिए। 25 मिनट पूरी लगन से काम कीजिए, फिर 5 मिनट उससे एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं। तीसरे, हम बात करें कि सोशल मीडिया से डिटॉक्सिफिकेशन करें। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो अपने फोन के नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दें। वो जो 5 मिनट का रील स्क्रोलिंग का चक्र व्यू है ना साथियों, वो पूरा घंटा खा जाता है, इसलिए बचिए इन सभी चीजों से।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

इस ब्रेक के बाद श्रोताओं आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू में। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी सुख सुविधाओं से तो घिर गई है, लेकिन इस आराम ने हमसे हमारी सबसे बड़ी पूंजी यानी हमारा स्वास्थ्य छीन लिया है। रिमोट, मोबाइल और सोफे से हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि हमारा शरीर अब चलना फिरना ही भूल गया है। इसी को कहते हैं शारीरिक निष्क्रियता, फिजिकल इनएक्टिविटी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सुस्ती सिर्फ आलस नहीं बल्कि हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करने वाली एक दीमक है। जब हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता तो हमारे खून की नसें सुस्त पड़ जाती है। इससे नसों में फेट जमने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है। निष्क्रियता हमारे इंसुलिन लेवल को भी बिगाड़ती है, जो सीधा टाइप 2 डायबिटीज को न्योता देता है। दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप अपने शरीर को रोजाना थोड़ा कष्ट दें, उसे चलाएं। जी हां साथियों, ऐसा करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। यही नहीं साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि हर वयस्क को हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम स्तर की फिजिकल एक्टिविटी जैसे तेज पैदल चलना, साइकिल चलाना जरूर चाहिए। अगर WHO की बात माने तो अगर हम सिर्फ इतना भी कर लें कि तो दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। तो साथियों, आज से ही लिफ्ट छोड़िए, सीढ़ियां पकड़िए, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कीजिए ताकि पैदल चलने का मौका मिले। याद रखिए, जान है तो जहान है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू पर नमस्कार चूरू कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे देश की मिट्टी में एक अजीब सा जादू है और इस जादू को अपने हाथ से सजाते हैं हमारे देश के कारीगर और शिल्पकार। चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हो, लकड़ी को रूप देने वाले बढ़ई हो या कपड़े सिलने वाले दर्जी, लेकिन क्या इन सबके हुनर को सही पहचान मिल पाती है? जी हाँ श्रोताओं, इसी सोच को बदलने आई है पीएम विश्वकर्मा योजना। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर आप भी कोई पारंपरिक काम करते हैं जैसे लुहार, सुनार, मोची या राजमिस्त्री, तो आप अब आपका हुनर चमकेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। भारत सरकार की इस स्कीम के तहत आपको मिलते हैं ढेरों फायदे। सबसे पहले आपको मिलेगा ऑफिशियल आईटी कार्ड और सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको नए जमाने के हिसाब से फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और मजेदार बात पता है क्या? ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए का स्टाम्पेड भत्ता भी मिलेगा। इतना ही नहीं, नए औजार और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ई वाउचर अलग से दिया जाएगा। है ना कमाल की बात साथियों? ये जो स्कीम है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, लाभ इसका आप ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो सुनिए, इस योजना में आपको अपना काम बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन मिलता है। पहली किश्त में 1 लाख और दूसरी किश्त में 2 लाख और ब्याज दर सिर्फ 5%। आवेदन करना भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो बस अपने साथ आधार कार्ड, बैंक डिटेल और राशन कार्ड लीजिए और पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए। आप चाहें तो ऑफिशियल पोर्टल pmvishwakarma.government.in पर भी चेक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज इस योजना से जुड़िए, अपने हुनर को नए जमाने का हथियार बनाइए और आत्मनिर्भर बनिए। आज के लिए साथियों यही जानकारी आत्मनिर्भर बनने के लिए बेहतर रहेगी।

और इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की आपके रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक दारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
5: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
6: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
5: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956

0: में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3-4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे।

प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से

0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा, वाचन स्वर है मनीष भारद्वाज की।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप निरंतर सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में से उद्धृत अंश।

श्रोताओं, गांधी जी ने इस महान किताब रूपी आत्मकथा को 29 नवंबर 1925 को लिखना प्रारंभ किया और 3 फरवरी सन 1929 को यह किताब पूरी हुई थी। गांधी अध्ययन को समझने में सत्य के प्रयोग को एक प्रमुख दस्तावेज का दर्जा हासिल है, जिसे स्वयं गांधी जी ने कलमबद्ध

श्रोताओं, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। बापू ने यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी, हिंदी में इसके अनुवाद कई लेखकों ने की। यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग का लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने समझाने के विचार से किया था।

श्रोताओं, यूं तो गांधी के जीवन पर बहुत से व्यक्तियों का और बहुत सी पुस्तकों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी आत्मकथा के चौथे भाग के 18वें अध्याय में खुद गांधी जी ने उस किताब का जिक्र किया है जिसने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। आज हम उसी पुस्तक का जिक्र करेंगे जिसने हमारे राष्ट्रपिता को बहुत गहरे तक प्रभावित

इस अध्याय में बापू लिखते हैं, इस महामारी ने गरीब हिंदुस्तानियों पर मेरे प्रभाव को, मेरे धंधे को और मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। साथ ही यूरोपियों के बीच मेरी बढ़ती हुई कुछ जान पहचान भी इतनी निकट होती गई कि उसके कारण मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ने लगी। जिस तरह वेस्ट से मेरी जान पहचान निरामिषहारी भोजन गृह में हुई, उसी तरह पोलाक के विषय में हुआ। एक दिन जिस मेज पर मैं बैठा था, उससे दूसरी मेज पर एक नौजवान भोजन कर रहे थे। उन्होंने मिलने की इच्छा से मुझे अपने नाम का कार्ड भेजा। मैंने उन्हें मेज पर आने के लिए निमंत्रित किया। वे आए। मैं क्रिटिक का उप संपादक हूँ। महामारी विषयक आपका पत्र पढ़ने के बाद मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। आज मुझे यह अवसर मिल रहा है। मिस्टर पोलाक की शुद्ध भावना से मैं उनकी ओर आकर्षित हुआ। पहले ही दिन हम एक दूसरे को पहचानने लगे और जीवन विषयक अपने विचारों में हमें बहुत समानता दिखाई पड़ी। उन्हें सादा जीवन पसंद था। एक बार जिस वस्तु को उनकी बुद्धि कबूल कर लेती, उस पर अमल करने की उनकी शक्ति मुझे आश्चर्यजनक मालूम हुई। उन्होंने अपने जीवन में कई परिवर्तन तो एकदम ही कर लिए। इंडियन ओपिनियन का खर्चा बढ़ता जाता था। वेस्ट की पहली ही रिपोर्ट मुझे चौंकाने वाली थी। उन्होंने लिखा, आपने जैसा कहा था वैसा मुनाफा मैं इस काम में नहीं देखता, मुझे तो नुकसान ही नजर आता है। भई खातों की अव्यवस्था है, उगाही बहुत है पर वह बिना सिर पैर की है। बहुत से फेरफार करने होंगे, पर इस रिपोर्ट से आप घबराएं नहीं। मैं सारी बातों को व्यवस्थित बनाने की भरसक कोशिश करूंगा। मुनाफा नहीं है, इसके लिए मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। यदि वेस्ट चाहते तो मुनाफा ना होता देखकर काम छोड़ सकते थे और मैं उन्हें किसी तरह का दोष ना दे सकता था। यही नहीं, बल्कि बिना जांच पड़ताल किए इसे मुनाफे वाला काम बताने का दोष मुझ पर लगाने का उन्हें अधिकार था। इतना सब होने पर भी उन्होंने मुझे कभी कड़वी बात तक नहीं सुनाई। पर मैं मानता हूँ कि इस नई जानकारी के कारण वेस्ट की दृष्टि में मेरी गिनती उन लोगों में हुई होगी जो जल्दी में दूसरों का विश्वास कर लेते हैं। मदनजीत की धारणा के बारे में पूछताछ किए बिना उनकी बात पर भरोसा करके मैंने वेस्ट से मुनाफे की बात कही थी। मेरा ख्याल है कि सार्वजनिक काम करने वाले को ऐसा विश्वास ना रखकर वही बात कहनी चाहिए जिसकी उसने स्वयं जांच कर ली हो। सत्य के पुजारी को तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूरे विश्वास के बिना किसी के मन पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव डालना भी सत्य को लांछित करना है।

मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि इस तथ्य को जानते हुए भी जल्दी में विश्वास करके काम हाथ में लेने की अपनी प्रकृति को मैं पूरी तरह सुधार नहीं सका। इसमें मैं अपनी शक्ति से अधिक काम करने के लाभ को दोष देखता हूँ। इस लोभ के कारण मुझे जितना बेचैन होना पड़ा है उसकी अपेक्षा मेरे साथियों को कहीं अधिक बेचैन होना पड़ा है। वेस्ट का एक ऐसा पत्र आने से मैं नेटाल के लिए रवाना हुआ। पोलाक तो मेरी सब बातें जानने लगे ही थे। वे मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए और यह कहकर, यह रास्ते में पढ़ने योग्य पुस्तक है, आप इसे साथ ले जाइए, आपको पसंद आएगी। उन्होंने रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक मेरे हाथ में रख दी। इस पुस्तक को हाथ में लेने के बाद मैं छोड़ ही नहीं सका। इसने मुझे पकड़ लिया। जोहान्सबर्ग से नेटाल का रास्ता लगभग 24 घंटों का था। ट्रेन शाम को डरबन पहुंचती थी। वहां पहुंचने के बाद मुझे सारी रात नींद न आई। मैंने पुस्तक में सूचित विचारों को अमल में लाने का इरादा किया। इससे पहले मैंने रस्किन की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। विद्या अध्ययन के समय में पाठ्य पुस्तकों के बाहर की मेरी पढ़ाई लगभग नहीं के बराबर मानी जाएगी। कर्मभूमि में प्रवेश करने के बाद समय बहुत कम बचता था। आज भी यही कहा जा सकता है, मेरा पुस्तकीय ज्ञान बहुत ही कम है। मैं मानता हूँ कि इस अनायास अथवा बरबस पाले गए संयम से मुझे कोई हानि नहीं हुई, बल्कि जो थोड़ी पुस्तकें मैं पढ़ पाया हूँ, कहा जा सकता है कि उन्हें मैं ठीक से हजम कर सका हूँ। इन पुस्तकों में से जिसने मेरे जीवन में तत्काल महत्व के रचनात्मक परिवर्तन कराए, वह अनटू दिस लास्ट ही कही जा सकती है। बाद में मैंने उसका गुजराती अनुवाद किया और वह सर्वोदय नाम से छपा। मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अंदर गहराई में छिपी पड़ी थी, रस्किन के ग्रंथ रत्न में मैंने उसका प्रतिबिंब देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया और मुझसे अमल करवाया। जो मनुष्य हम में सोई हुई उत्तम भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता है, वह कवि है। सब कवियों का सब लोगों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अंदर सारी सद्भावनाएं समान मात्रा में नहीं होती हैं। मैंने सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार समझा है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। वकील और बाल काटने वालों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली बात मैं जानता था, दूसरी को धुंधले रूप में देखता था, तीसरी का मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। सर्वोदय ने मुझे दिए की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी चीजें समाई हुई हैं। सवेरा हुआ और मैं इन सिद्धांतों पर अमल करने के प्रयत्न में लग गया।

श्रोताओं, गांधी चर्चा के आज के इस अंक में हम सुन रहे थे हमारे राष्ट्रपिता की आत्मकथा में उस किताब का जिक्र, जिस किताब ने हमारे बापू के जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। वह पुस्तक थी महान लेखक रस्किन की अनटू दिस लास्ट। सुनते रहिए कार्यक्रम गांधी चर्चा। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी।

अभी श्रोता सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

साथियों, मई का महीना चल रहा है और सूरज देवता अपने पूरे तेवर दिखा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 45 डिग्री के पार जा चुका है और हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी है। ऐसी तपती गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आज हम जानेंगे कि इस जानलेवा गर्मी से हम खुद को, बच्चों को और घर के बुजुर्गों को कैसे बचा सकते हैं।

सबसे पहले बात करते हैं सबसे अचूक अतियार की, पानी और सही खान पान। जी हाँ, प्यास का इंतजार ना करें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। ORS का घोल, यानी चक्कर या थकावट होने पर ORS या नमक चीनी का घोल जरूर पिएं। साथ ही हम देसी अमृत की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सत्तू का शरबत, बेल का जूस, पुदीने की चटनी और प्याज का सेवन लू से बचाने में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इस मौसम में, इस गर्मी की तपन में क्या नहीं करना चाहिए? इस मौसम में चाय, कॉफी, शराब या ज्यादा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं।

दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे घर की नींव यानी बुजुर्गों की और हमारे आंगन की रौनक यानी नन्हे बच्चों की। इस मौसम में उनका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए इन बातों को गांठ बांध लें। दोपहर का कर्फ्यू लगा दें, यानी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बुजुर्गों और बच्चों को किसी भी हाल में बाहर न जाने दें। साथ ही घर की खिड़कियों पर हरे पर्दे या खास की यानी खस की टींटियां लगाएं, यानी रात के समय खिड़कियां खुली रखें और ताकि ठंडी हवा आ सके, और दोपहर में इनमें हरे पर्दे जरूर लगाएं। साथ ही उन्हें केवल सूती और ढीले साथ ही हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, सिंथेटिक कपड़ों से बिल्कुल बचें। साथ ही भोजन की बात कर लें तो बच्चों और बुजुर्गों को पचने में आसान दलिया, खिचड़ी और रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा जरूर दें। दोस्तों, अगर मजदूरी, नौकरी या किसी बेहद जरूरी काम से दोपहर में बाहर निकलना ही पड़े तो इन बातों को बिल्कुल ना भूलें, यानी घर से हमेशा कुछ खाकर और दो ग्लास पानी पीकर ही निकलें, यानी हमें खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना है। सुरक्षा कवच की बात करें तो अपने सिर को सफेद सूती कपड़े या अंगूछे से ढकें, धूप का चश्मा लगाएं और पैरों में चप्पल या जूते जरूर पहनें।

कभी भी किसी बच्चे या पालतू जानवर को खड़ी गाड़ी के अंदर करके न जाएं। बंद कार भट्टी जैसी गर्म हो जाती है, ये जानलेवा भूल है साथियों। श्रोताओं, अगर आपके आसपास किसी को तेज बुखार आए, त्वचा लाल और सूखी हो जाए, चक्कर आए या बेहोशी होने लगे, तो इसे हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का गंभीर संकेत माना जा सकता है। तुरंत पीड़ित को छायादार या एसी वाले कमरे में ले जाएं। उनके सिर और पूरे शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। होश में आने पर उन्हें ठंडा पानी या ओआरएस दें और तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी के इस मौसम में ये जो जानकारियां हैं, चेतावनियां हैं, ये आप अपनाकर सुरक्षित रह सकते हैं। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के ये कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांव में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने VC के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार देश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आम जन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले CBI ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
2: नए राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनउपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आम जन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
3: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज है उनके बारे में एक इंटरैक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्ट्रेट या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, उसके यूजेस क्या है, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SSID से परचेज कर पाए इस कियोस्क के माध्यम से।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और सीबीएसई ने पहली जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए साहित्य सुगंध में राजस्थानी कविता पाठ कवि श्री देवेंद्र जोशी से।

जाग्यो भाग सगळा सूंतो राबड़ी बाजरी एरा रोट खाखोड़ी अर खीचड़ी फेरू चाटो होट बिन काचर क्या शू बने चटनी घणी सुवाद एक बार जे चाखली आवे बरबर याद बोतल पानी बारेलो रह जा सगळा पाच मारे मुर्दर देश में पीवो मीठी छाच काकड़ियो खाया बिना आवे किशो सुवाद घटक मती।

भारत भूम जण्यासुत एड़ा मात भूम शू प्यार करे जिनरी ख्यात्या मान गणेरो ओ सगड़ो संसार करे भारत भूम जण्यासुत एड़ा मात भूम शू प्यार करे इन मान धनी सुत धीरा में विवेकानंद रो नाम अगाड़ी निज धर्म संस्कृति राहे ताड़ू मान बढ़ावन बढ़िया अगाड़ी आखी दुनिया करो अचंभो जद ज्ञान जोतरी बनी छटा दुनिया ने मार्ग दिखलायो वो फाड़ नीशरियो काली घटा इन रो ज्ञान घनेरी खिमता कद कुण सो इनकार करे भारत भूम जण्यासुत एड़ा मात भूम शू प्यार करे आ बात पुरानी घणी नहीं फगत सो साल पुरानी है भारत भूम पर रहवणियारी आ जानी पहचानी है विश्व मंच पर बोलन री जद आए सोवणी घड़ी बनी ताल्या रो तां तो नी टूट्यो बा कई बात जबरी घणी कै सगड़ा धर्म बरोबर आछा सदा एक सो सार करे भारत भूम जण्यासुत एड़ा मात भूम शू प्यार करे युवा शक्ति रे ओले दोले इनरी निजरा टिकी रही सदा जवाना सूहे तारी लगन लालसा लगी रही कूड़ी रीत प्रथावा भूंडी आरो मन झक जोर दियो जड़ा मूल सू मेटन सारू बे मिनखा पर जोर दियो अन युग पुरुष रे चरणा दीपक शीश निवाय सत्कार करे भारत भूम जण्या

मूछ दूधरा सपना आसी रोसी भूखा लाल चाय नित रंगी पीसी कह दीपक कवि राय कह दीपक कवि राय हुए नहीं घीरा दर्शन लुखा गिटता रोट आंखियां लागेली बरसन आंखियां लागेली बरसन बाजरो मिलसी रुपियरो सो ग्राम एक बरीजे गूंजियो ल्यावन रो आराम खांडरी पुड़िया बिकसी ल्यावन रो आराम खांडरी पुड़िया बिकसी तिनखा 30,000 पण दिन दसी दिक्सी ईशु बचावे राम राम रे सामत आई राखो गोजी दाब करेली खाली आ महंगाई करेली खाली आ महंगाई दोगा चिंती आ कविता है जकी आपनो जो शहरी जीवन है।

भीड़ तो बहुत बदरी है पर मारो कवि मन ई बात सुन दुखी है कि मिनख अपनो शहरा में घणो घटतो जा रही है। थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। कठे गई बे चौपाला और कठे गई बा तड़क बड़क। थे कहो शहर में भीड़ बहुत है

तुरल मचावे नाना बचिया, नाना बचिया टेंपू मोटरसाइकिलां जीपां कारां, तुरल मचावे नाना बचिया काल खड़ो है बाया बाको। अर्थतंत्र इसी टेम में बिन पीसा को पड़े फरक, थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। लागे सुनो सुनो अबो अठे दर को नी अपनायत, लागे सुनो सुनो अबो अठे दर को नी अपनायत, गाम गोठरा बूढ़ा ठेरा अठे बारी आवे सामत। कुट्यो लुगाई फिरो शहर में किस्यो पण की जावे रड़क, थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। सासरी ऐसू आवे भाईली, गाँव की बात है, सासरी ऐसू आवे भाईली छोरियां रोजम घट लग जावे, अठेपण की बेरो कोनी कुण आवे अर कुण कुण जावे, के गीत बधाया पड़ी भाड़ में, गीत बधाया पड़ी भाड़ में, बाता लागे चूंट अड़क, थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। अनजान बटाऊ गैले भगतो, गाँव की बात है, अनजान बटाऊ गैले भगतो सूंत राबड़ी खावे है, रोटी पानी छोड़ अठे तो ठाडी आंख दिखावे है। आज उनमणी बणगी पोलिया बाजे घंटी टणक टणक, थे कहो शहर में भीड़ बहुत है पण मने लाग री सुनी सड़क। अपना यत्रो गलियो मुस्ता संस्कृति री चोटी खिंचता, मिनखा चारो लीरो लीरो भायल चारो पल में पीसता, देख काल

अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में राजस्थानी कविता पाठ कवि श्री देवेंद्र जोशी से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। लीजिए सुनिए बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल विहार।

आदतों का होना बहुत जरूरी होता है। और पता है बच्चों, सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बड़ा होकर होशियार बने, अच्छा बने और दूसरों के नजरों में वो अच्छा दिखे। तो अच्छा बनने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि हमने कौन कौन सी अच्छी आदतें सीखी हैं और नहीं सीखी हैं, तो हमें उनको सीखना है। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो सीखना आपके लिए जरूरी होता है। और बचपन से ही जो आदतें आप में आ जाती है वो ताउम्र हर समय आपके साथ रहती है। और अच्छी आदतों का तो कहना ही क्या है। पता है, सबसे पहली बात तो यही है कि हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो परिवार छोटा हो या बड़ा, आपको ये जरूरी है कि आप बड़ों की इज्जत करना सीखें। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, माँ, दादी या छोटे भाई बहन या बड़ी बहन आपसे कुछ कहती है कि ये काम गलत है, तो आपको उस समय सतर्क होना है और क्या सही है ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। और इसके लिए जरूरी है कि पहले अगर आपके मन में ये होता है कि हम बड़ों की इज्जत करना सीखिए, तो आपके लिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। बड़ों की इज्जत करना आपके लिए बच्चों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़ों की अगर हम इज्जत करते हैं तो हम विनम्रता सीखते हैं। और जो आप ये चीख चिल्लाकर बात करते हैं ना कभी कभी, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती। हमें कहाँ पर कैसे बात करनी है ये हम बचपन से ही बखूबी सीख जाते हैं, तो अच्छी बात होती है। तो फिर क्या होता है, हमें गुड मैनर्स और बैड मैनर्स का जो अंतर है वो पता चलता है। और गुड मैनर्स और अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ इन अच्छी आदतों में आपकी ये बात भी एक आ जाती है कि आप जो है वो कितना समय खेलते हैं, कितना समय सोते हैं और कितना समय आप अपना बर्बाद करने से रोकते हैं। तो सोने का भी आपका जो शेड्यूल है वो निर्धारित होना चाहिए। रात को निश्चित समय पर आपको सोना चाहिए। इससे क्या होता है, आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि आपको स्कूल जाना भी रहता है। हालांकि अब तो आपकी छुट्टियां हो गई है, लेकिन अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो ये आदत आपकी हमेशा के लिए आपके पास रहती है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका फिर पढ़ाई में भी मन लगता है। आप स्कूल जाते हैं तो भी आप बहाने नहीं बनाएंगे। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो होते हैं ना, वो अपना काम दूसरों पे डाल देते हैं। मम्मी कर देगी, दीदी कर देगी, है ना। तो ऐसी आदत आपको नहीं रखनी है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम आपके अपने होते हैं, तो अगर आप मेहनत करना सीखते हैं ना, तो फिर बहुत सारे गुणों का विकास आप में होता है। बच्चों, आप शॉर्टकट ना अपनाएं। जो काम आपको करना है, आपको नहीं आता है, तो आप पूछ कर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप मेहनत करना सीखते हैं। और अच्छी आदतों में आपकी एक बात ये भी आ जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अभी आपके पास समय भी है, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। इन छुट्टियों का उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें होती है, अच्छी किताबें होती हैं जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो वो किताबें आप पढ़ सकते हैं। और ऐसी किताबें अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप में अच्छी अच्छी जो भावनाएं हैं आपके मन में विकास करेगी। और साथ ही साथ आप अच्छी बातों को सीखते हैं तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। और फिर धीरे धीरे होता क्या है कि आप हर रोज थोड़ी सी ही पढ़ो जाए, आप किताब जरूर पढ़ेंगे। आपकी कोर्स वर्क की किताब से अलग बहुत सारी ऐसी किताबें होती है जिससे आपके जीवन के विकास में वो बहुत सहायता देती है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपना जो काम है वो खुद करें, दूसरों पर ना डालें। अपने माँ के भरोसे, बड़े के भरोसे

0: से ना रहें, आप अपने काम खुद करें। इससे क्या होता है, एक तो आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहते हैं, दूसरे आपको अपना काम करना है। आप दूसरों को अगर ना कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अपना काम, जैसे कि स्कूल का होमवर्क है या अन्य जो काम आपको करने होते हैं, वो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको करना है, इसलिए वो आपको याद रहता है। साथ ही साथ जो समय होता है उसका सदुपयोग हमें कैसे करना है, तो समय का जो उपयोग है वो करना हम बचपन से ही सीखते हैं। देखिए, जैसी आदत आपकी बचपन में आ जाती है ना, वैसे ही बड़े होने तक आप में रहती है, आप में क्या सब में रहती है। तो अगर बचपन से ही आप समय का उपयोग करना सीखते हैं, समय को बर्बाद करना आप छोड़ देते हैं, तो वो ताउम्र आपके काम आती है। इससे क्या होता है कि आप में और भी ज्यादा आप क्रिएटिव होते हैं और समय का उपयोग करना सीखते हैं। साथ ही साथ कई बार ये भी देखा जाता है बच्चों कि आपकी गलती होती है ना, तो भी आप उस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, उस गलती को नहीं मानते हैं। मैं ये नहीं कहती सब बच्चों में होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसी आदतें होती है। तो अगर आप में ये आदत है तो आज ही उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अपनी गलती जो स्वीकार करता है ना, उसको सब पसंद करते हैं। और गलती किससे नहीं होती है, सबसे होती है। गलती होने का मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया है, अनायास हो जाना ही गलती होती है, और उस गलती के में सुधार तभी होता है जब आप उसको स्वीकार करें। इससे क्या है, आप अपने करियर को जब बड़े होंगे ना तो और भी अच्छा बना पाएंगे। गलती को स्वीकार करेंगे, सॉरी बोलना सीखेंगे, तो आप सबको अच्छे लगेंगे। अलावा इसके एक ऐसी आदत भी है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जिसमें हमें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी होता है। कई बार होता है ना कि आप में से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं, मेरे से अगर ये काम हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा, है ना, चाहे वो भूल से हुआ हो, लेकिन आपको उस चीज को समझना है। और बचपन से ही आपको ये आदत भी डालनी है कि भले ही आपसे, आपने जानबूझ के किसी काम को किया हो, भले आपसे भूलवश कोई काम हो गया हो, लेकिन आप उस बात को अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। कोई भी बात, कोई भी गलती हो गई आपसे, कोई बात नहीं है, लेकिन उस बात को आप छिपाएं नहीं। अन्य लोगों को बताने की बजाय आप अपने पेरेंट्स को अगर बताते हैं, अपनी माँ को अगर बताते हैं, तो उस समस्या का समाधान जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा और एक नई और अच्छी राह आपको माँ बताएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे देखते हैं ना हम छोटे छोटे बच्चे, उनके किसी भी चीज को अगर कोई छू देता है ना तो वो तपाक से रोने लग जाते हैं। आप कि भी अगर ऐसी आदत है ना तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े बड़े भी हो जाए ना तो उनकी मानसिकता ऐसी ही बनी रहती है कि कोई मेरी चीजों के हाथ नहीं लगाएगा, कोई ऐसे नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये आदत खराब है। आप अपनी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना भी सीखिए। आप सही गलत का फर्क करना सीखिए बच्चों। हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, इन बातों की समझ आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इन बातों को आप जरूर अपनाएंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और बच्चों, पता है हमें कि अब आपको अपनी कहानी का इंतजार है जो आप हमेशा सुनते हैं, और कहानियां सुनना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सीखना, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि कहानियों के माध्यम से आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। आज की जो आपकी कहानी है वो है कछुआ और मोर की कहानी। पता है बच्चों, एक बार एक जंगल में एक बहुत सुंदर जो मोर है, मोर तो वैसे भी सुंदर ही होता है, एक मोर जो है वो बहुत खूबसूरती से नाच रहा था, नृत्य कर रहा था, और उसकी जो चमकीली नीली और हरी जो पंख है वो अपने पंखों को पूरी तरह फैलाए हुए था। और ऐसे भी आप देखो, किसी मोर को जब आप नाचते हुए देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लगता है ना? वाकई में ये एक बहुत अच्छा नजारा होता है जो हमारे मन को मोह लेता है। उस समय उस जंगल में जब वो मोर नाच रहा था तो हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, और बारिश की खुशबू के साथ साथ उसके नृत्य ने जंगल को सचमुच स्वर्ग बना दिया था। और पता है बच्चों, जब बारिश का मौसम होता है तो ये मोर भी बहुत ज्यादा झूमते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। वहां पर एक कछुआ था, और वो कछुआ जो है वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और छिपने की जगह से बाहर आया। बाहर आके वो कहां गया? मोर के पास। उसने मोर को पुकारा और बोला कि देखो मित्र, आप तो वाकई में बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, मैंने तो दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर नृत्य कहीं देखा ही नहीं है। वो मोर को इस तरीके से बता रहा था, लेकिन कछुए ने देखा कि मेरी इतनी प्रशंसा करने के बाद भी मोर जो है वो उदास है। कछुए ने मोर से पूछा कि भाई आप उदास क्यों हैं? तो मोर ने कहा कि देखो, वैसे मैं देखने में तो सुंदर हूं, ये सब कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जो है वो इतनी मधुर नहीं है, अच्छी नहीं है। उसने कछुए से कहा कि क्या तुमने कभी कोयल को देखा है? वो कितना सुंदर गाती है, और लोग जो है वो कोयल को सुनना पसंद करते हैं। कछुआ एक पल के लिए कुछ नहीं बोला, वो आश्चर्य करने लगा। लेकिन कछुआ जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और उसने मोर से कहा कि देखो मित्र, हम सभी की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं, और इस मामले में हमें किसी से कोई प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं जमीन पर दौड़ लगाते हुए खरगोश से मुकाबला करूं तो निश्चित ही है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुम ये भी जानते हो ना कि अगर हम पानी में तैरने की प्रतियोगिता करें तो भला कौन जीतेगा? ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना तुम? तो मोर ने सोच विचार किया। मोर को लगा कि वास्तव में ये सच कह रहा है, इस बात पर गौर करना चाहिए। तो मोर को अपनी खराब आवाज, या आवाज तो मोर की अच्छी होती है, इतनी खराब भी नहीं होती है, उस पर पछताने की बजाय, उसको लगता था मेरी आवाज खराब है, पछताने की बजाय उसने सुंदरता के लिए आभारी होने का फैसला किया। तो बच्चों, ये कहा

कहानी जो है वो बहुत छोटी सी है, लेकिन पता है इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि सभी व्यक्तियों में, सभी लोगों में अद्वितीय गुण होते हैं और हमें अपनी खूबियां और अपनी कमियां पता होती है, लेकिन हमें अपनी खूबियों के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए और अपनी कमियों पर पछताने की बजाय हमें अपनी खूबियों को और निखारने की जरूरत समझनी चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल विहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।

0: एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हाँ, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता था भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना, दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ।
2: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था, वो पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस। दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है, उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला।

0: उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जय श्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी।
1: अच्छा।
0: तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया।
1: अच्छा।
0: मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
1: अच्छा।
0: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
1: तो
0: मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
1: हाँ।
0: हमारा तो मेरा मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
1: अच्छा।
0: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
1: अच्छा।
0: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
1: अच्छा, अच्छा। आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
0: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
1: बिल्कुल
0: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
1: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नय्यर साहब का,
0: नय्यर साहब का,
1: क्या बात क्या बात।
0: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
1: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए,
0: हाँ, हाँ।
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे
0: अच्छा, अच्छा।
1: आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ।
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है। वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है। तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी, जी, जी।
1: कोई कोई गाने इतने गुजराती में, गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे उनकी भाषा में, अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ।
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंसूर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि मेरे शो, मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ।
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्र का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था, कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: है,
1: ऐसा लगता था, तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ।
1: मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की, बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ,
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ। ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में, गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं,
0: हाँ।
1: लेकिन अनुभव से,
0: हाँ।
1: आपको मालूम होना चाहिए,
0: हाँ।
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये रात को सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए,
0: हाँ।
1: किसी शहर में, किसी, हाँ। गांव में, छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा।
1: तो होने से ज्यादा अच्छा होता था,
0: हाँ। और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा।
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो वो आगे आके उनको उसको एक ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ।
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: फिर जानी इसकी अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी। मैं क्या जानी भाई आप इधर लगे पुना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते थे।
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी

0: और फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
1: जी, जी,
0: फिर भी आखिर में क्या हम दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
1: हाँ,
0: ये होता है, ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा जब मुझे दाद मिलती थी लोगों की तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगड़ धिंगा ये वो डांस वो ये से नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
1: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
0: हो
1: तो जरूर सवाल ही नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत सुंदर लगता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
1: प्राइवेट शोज भी होते,
0: प्राइवेट शोज भी होते थे
1: कंपनी के,
0: होते
1: लिए
0: थे कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
1: अच्छा।
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गाँव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
1: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा।
0: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
1: अच्छा।
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
1: अच्छा।
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास, तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने है वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा वो आना ही चाहिए, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को।
1: जी, ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: मिलता नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियन जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिस तरह से

0: सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से। तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे तो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, एक ही रिहर्सल। वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात, जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल। तो एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो जी, को
1: जी। आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय
0: मनके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मनके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी।
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्मर होता है वो था, बहुत सारे हल्की फुल्की बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी,
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: आ गया।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली
1: हाँ।
0: तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातियाँ, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी।
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, मुझे लगा मैंने जन्नत पाली सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला, तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: आई।
0: फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराया, पर गायला उभा रहा कसो करता, नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए,
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा लपिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: அருகே படால பிக்கலை அம்பா அளவை படால பிக்கலை அம் ஒனிட்டு படால பிக்கலை அம்பா. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये अम्बा ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी.
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे.
1: अच्छा.
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बोलकर अरे क्या कर रहे हैं आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से. फिर जोर से एकदम जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था. उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह
0: उनको भी शायद.
1: प्रमिला जी आपकी बातों में

0: हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
1: थी। हाँ।
0: और अपने लिस्ट में
1: कनाडा गाना सुनाती हूँ।
0: जी जी जरूर,
1: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ।

0: उधरे ज्यादा।
1: और उधर गुजरात की एक मैं खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
2: अच्छा,
1: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, मां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
2: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई, हाँ जी, लिस्ट बनाई होगी, हाँ जी, है ना, और आखिरी शो जब किया,
1: हाँ जी,
2: और तब की जो उस प्रोग्राम उस शो की जो लिस्ट थी,
1: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें। अच्छा? जो लोग पसंद करते थे।
2: अच्छा?
1: हमारे लिए नहीं। हाँ? लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
2: अच्छा?
1: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक कवरी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
2: अच्छा।
1: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
2: वाह वाह,
1: बहुत मजा आता,
2: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके।
1: हाँ जी
2: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारे
1: और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: खेतों पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती।

0: सुन यार पिंकी, ठीक 3 बजे मॉल पे मिल। वो क्या है ना, सेल चल रही है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
1: अरे देख यार, तू कोई और टाइम रख लेना, 3 बजे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
0: कहीं आती जाती नहीं, ऐसा क्या करती है तू 3 बजे?
1: अरे तू इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियाँ कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती है
2: सखी सहेली।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

सबसे पहले जानकारी लेते हैं प्रथम सभा के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे आप ही के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चोरू। आज के कार्यक्रम में सूत्रधार स्वर होगा कुंज बिहारी बिरमी वाला का, तकनीकी सहयोग रहेगा जय सिंह टूडी और गुलझारी लाल मीना का, प्रस्तुति अमित कुमार सैनी की होगी और संयोजक विनोद कुमार हल्किया का होगा। गैर फिल्मी

गजलों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुनेंगे दिन के 12 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन पाएंगे दिन के 12:30 पर। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन का 1:05 पर। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे शाम 6:05 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ही संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 6:30 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:45 का। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही होगा शाम 6:40 पर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक जारी होगा रात्रि 8:45 पर। न्यूज़ 8 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9 बजे।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रिले नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा रात्रि 10:00। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11:00। 11:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित प्रथम व द्वितीय सभा के शेष रहे कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

0: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं आप ही के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू। आज के कार्यक्रम में सूत्रधार स्वर होगा कुंज बिहारी बिरमीवाला का, तकनीकी सहयोग होगा जय सिंह डूडी और गुलजारी लाल मीना का, प्रस्तुति अमित कुमार सैनी की होगी और संयोजक विनोद कुमार हल्किया का।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं। हमारे नए पुराने श्रोता लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी बहुत खास है। सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ मैं कुंज बिहारी। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की, फोन इन कार्यक्रम हेलो चूरू। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है।
2: जी सर नमस्कार, संदीप सोनग्रह बोल रहा हूँ सर।
1: संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सर।
1: संदीप जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
2: जी सर आज सुनना चाहूंगा कच्चे धागे फिल्म का गाना सर, हंस राज हंस और अलका याग्निक।

0: संदीप जी, ये जो गानों का हम सिलेक्शन करते हैं कि ये गाना आज हम फरमाइश कार्यक्रम में सुनेंगे, तो इसकी क्या एक सूची आपके पास है या फिर कैसे सिलेक्शन करते हैं आप?
1: सर, ये आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं तो सर उनमें पता चल जाता है कौन से कलाकार का गाना पता चल रहा है। तो कोई भी एक कलाकार है जिनकी आवाज में कोई गाना नहीं सुन पाएगा कोई श्रोता, कोई फरमाइश प्रोग्राम में या आलो आप शुरू में, तो सर हंसराज हंस की आवाज में अभी तक कोई गाना नहीं सुना है कई दिनों से।
0: हंसराज हंस का ये गीत आपने सुनना चाहा है। संदीप जी, कुछ खास है इन दिनों आपके गांव में?
1: सर इन दिनों का खास तो ये सर गर्मी का जो माहौल है वो सबसे ज्यादा चल रहा है दो तीन दिनों से, और गर्मी का असर बढ़ रहा है दो तीन दिनों से, मौसम भी थोड़ा बना हुआ है सर, ऐसा लग रहा है शायद बरसात होने की संभावना है, और दो दिन पहले भी कुछ बारिश हुई थी, बूंदाबांदी होने से थोड़ी निजात मिली थी।
0: आजकल तो वैसे भी एकदम मिक्सअप सा मौसम चल रहा है, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश कभी ओले, अलग अलग जो प्रकृति के रंग है वो हमें देखने को मिल रहे हैं।
1: हाँ सर, और कुछ सर गर्मी की वजह से कुछ पेड़ पौधे सर वो भी तो बहुत सूखने लग गए।
0: सही बात है, गर्मी का प्रकोप है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है, और जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी असर है।
1: सर एक बात कहना चाहूंगा सर, अगर कई श्रोता सकते हैं हमारे जो प्रोग्राम सुनते हैं, कई अध्यापक लाइन में भी सुनना चाहते हैं प्रोग्राम सुनते हैं सर, आज की जो छुट्टी पड़ गई बच्चों की, तो सर कई बार ऐसा भी देखते कई वीडियो भी सामने आया कि बच्चों की छुट्टी भी कर देते हैं, उनके बाद में जो ये जो कमरे के होते हैं उनके अंदर जो पक्षी होते हैं सर उनको बंद करके चले जाते, अब डेढ़ महीने की छुट्टी चल रही है तो डेढ़ महीने के अंदर स्कूल में आके कोई नहीं देखेगा।
0: आपका कहने का मतलब है कि जो किसी भी स्कूल के भवन को लॉक किया जाए तो उससे पहले उनके कमरे वगैरह उनकी पूरी तलाशी ली जाए कि कोई भी पक्षी वहां पर किसी प्रकार से या कोई और भी कोई पशु भी समझ लो अगर आ गए।
1: कई बच्चे भी रह जाते हैं सर।
0: हाँ, ये तो खैर बहुत कम होता है चांस ऐसा, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी। आपने एक अच्छा संदेश दिया है और आपकी आवाज आपका ये संदेश हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचा है, और हमारा हर एक वर्ग हमारा श्रोता है, तो ये जो आपकी बात है वो जरूर पहुंची है। संदीप जी, फोन किया इसके लिए शुक्रिया। सुनवा रहे आपको आपकी पसंद का ही गाना।

0: कार्यक्रम हेलो शोरूम में आपका स्वागत है।
1: साधुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रिवार बात कर रहा हूँ सर जी।
0: राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, एकदम ओजस्वी आवाज, चिर परिचित अंदाज आपका।
1: सर धन्यवाद इस प्यार के लिए और शुभकामना देना चाहता हूँ पूरे आकाशवाणी परिवार को। 90 साल का सफर आकाशवाणी गुजार रहा है और आप सभी की मेहनत और लगन की वजह से

0: श्रोता जितने भी हैं वो आनंद लेते हैं आपके प्रोग्रामों के द्वारा।
1: सही बात है। देखिए, जो भी कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए हम करते हैं, और आकाशवाणी के प्रसारण के जो 90 साल पूरे हो रहे हैं उसमें आप सभी श्रोताओं का बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी हमारे श्रोता लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है।
0: सर, ये सब आपका प्यार, आपकी मेहनत, आपकी लगन है, तो श्रोताओं को इतना आप प्यार बांट रहे हो, इसके बदले में श्रोता आपके पास पहुंच रहे हैं।
1: हमारे श्रोताओं के मिजाज को देखते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, तो श्रोताओं का जुड़ाव भी बढ़ता है और उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो कार्यक्रम में एक अलग उसका मजा दोगुना हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सर, ये तो कहते हैं ना, ये क्या है कि रेडियो और श्रोता और प्रस्तोता जितने भी है आकाशवाणी के साथ, ये एक दूसरे के पूर्वक है, और एक दूसरे की जब संगम बन जाता है तो ये प्रोग्राम और निखर जाता है।
1: सही बात है। देखिए, आपस में आपसे तालमेल है, उस तालमेल का ही एक बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी काम को सफल बनाने में। आज रामकुमार जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: हमराज फिल्म का गीत है तुम अगर साथ देने का वादा करो, बहुत ही प्यारी आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
1: वाकई बहुत अच्छा गीत है, ये कालजय गीत है, इनको हम जितनी बार सुने उतना ज्यादा उस गाने के प्रति हमारी तलब है वो बढ़ती जाती है।
0: इनकी एक एक लाइन, जो शब्दों की लाइन है, अपने महेंद्र कपूर जी ने इस गीत को बहुत डूब कर गाया है।
1: वाकई बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। राम कुमार जी, आप तो आकाशवाणी चुरू के जो फेसबुक पेज है उस पर भी लगातार जुड़े रहते हैं, आपके कमेंट्स भी हमें मिलते हैं, उससे हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे श्रोता सिर्फ देखकर उस पेज को आगे नहीं बढ़ते हैं, उस पर लाइक करते हैं, अपना कमेंट करते हैं, तो उससे लगता है कि हमारा और आपका स्नेह कुछ ज्यादा है।
0: सर, ये अपना परिवार है और परिवार से दूर हो नहीं सकते एक दूसरे को, और परिवार जब एक दूसरे के साथ संगम की तरह मिलते हैं तो अच्छा लगता है। परिवार एक साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा परिवार बहुत आगे बढ़कर बहुत कुछ प्रेरणा एक दूसरे से मिलेगी और सीखने को मिलेगी। और आकाशवाणी तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, आकाशवाणी के साथ जब से हम जुड़े हैं तो ऐसा लगता है कि हम बस परिवार के साथ घुल मिलकर हमेशा एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान करते रहे।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, ये प्यार आपका इसी प्रकार बना रहे आपके लिए।
0: तो मैं आपको लास्ट में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आकाशवाणी चुरू के जितने भी कार्यक्रम प्रोग्राम आप पेश करते हैं बहुत मेहनत के साथ करते हैं, श्रोता भी आपके प्रोग्राम बड़ी शिद्दत के साथ सुनते हैं, तो आपको शुभकामनाएं।
1: थैंक यू।
0: जितने आपके पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: मैं अर्जुन खंडेलवाल बोल रहा हूँ।
0: अर्जुन जी स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो चोरू से। हाँ
0: तो अर्जुन आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं? कैसे लगते हैं कार्यक्रम?
1: अच्छे। हाँ
0: अच्छे लगते हैं। आपके स्कूल की छुट्टियां हो गई है अभी? बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल का जो होमवर्क है वो कर लिया आपने?
1: कर रहा हूँ।
0: अच्छा साथ में चल रहा है। ये बात है। देखिए बहुत एक नन्हे श्रोता से हमारी बात हो रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: बत्तीस
0: अब अर्जुन से हम पूछना चाहेंगे कौन सा गीत सुनेगा अर्जुन? कटी पतंग फिल्म से। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी पसंद है अर्जुन की। और अर्जुन ने फोन किया, इसके लिए अर्जुन को थैंक यू बोलेंगे। और अब हम अगले कॉल की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका।
1: चूरू से राजा नंदवाणी बोल रहा हूँ।
0: राजा जी, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है सर। आज तो ऐसे सोचता हूँ कि आज बहुत जल्दी मिल गया आज मेरा कॉल।
0: अच्छा,
1: बहुत थोड़े प्रयास में मिल गया।
0: क्या बात है, देखिए लाइन आपके लिए खुली रह गई, इसका मतलब आज है।
1: आज लगता तो ऐसा ही है कि जैसे कोई लाइन खुली रह गई। वैसे मुझे कोई मुश्किल से 3 या 4 मिनट ही हुए होंगे मैं कॉल मिलाते हुए। मैंने 3:10 पे लगभग मिलाना शुरू किया था, तो लगभग 2-3-4 बार में ही मिल गया था।
0: दिल से मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती है अक्सर।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो हमारे श्रोताओं का प्यार है ये हम तक पहुंचता रहता है अलग अलग तरीकों से।
1: बिल्कुल।
0: आपके फोन कॉल्स भी आते हैं और आप ईमेल्स के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक अच्छा हमारा रिलेशन हमारे श्रोताओं के साथ बन जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: राजा भाई, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: ये संगीत फिल्म का है, वो जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे।
0: क्या बात है, एक अलग ही पसंद हम कहेंगे आपकी।
1: देखिए सर, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं आज पहली बार, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैंने पहली बार 11 बजे से लेके और लगभग 2:30-3 तक आपका प्रोग्राम सुना है
0: जी।
1: तो मुझे सारे ही प्रोग्राम, वो महिला जगत भी आया था वो भी अच्छा लगा।
0: अच्छा।
1: और खास करके मुझे जो 11 से 12 आपने जो गीत बजाए थे वो बहुत शानदार लगे, और 2:30 जो बजे थे वो तो और भी बेस्ट थे गाने। आज
0: देखिए गानों का
1: आपका जो चयन होता है ना, कुछ मतलब अलग हटके जो अच्छा चयन होता है आपका गानों का।
0: देखिए गाने तो राजा भाई, मेरा ये मानना है कि गाने वही प्ले होने चाहिए जो हम साथ में गुनगुना सकें, उन गानों को हम याद कर सकें, उन गानों के साथ हम अपनी कुछ यादों को ताज़ा कर सकें। ऐसे गीत जो सुनने वाले को अच्छे लगते हैं, तो इस प्रकार के गीत बनाने की हमारी की कोशिश रहती है कि ऐसे ही गीत हम बजाएं।
1: बिल्कुल। और मेरा भी हमेशा यही सर प्रयास रहता है कि वैसे गाने सुने जाएं जो कम बजते हैं, क्योंकि अक्सर हम गाने देखते हैं कि वो रिपीटेशन होता है गानों का, वही वो गाने बजते हैं जो लगभग बजते रहते हैं, और श्रोता भी हैं जो वो कई बार वही गाने पसंद करते हैं कि जैसे जो बज रहे हैं गाने, सुन रहे हैं, देखा ये सुन लिया यही फिर से सुनते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें टेस्ट अगर चेंज हो ना, अगर हटके गाने हो तो सुनने में भी मजा आएगा। कई बार तो ऐसा होता है सर कि पता ही नहीं लगता है कि ये गाने भी होते हैं क्या, ये कभी हैं क्या गाने, कभी पता ही नहीं चलता है।
0: बहुत बार हम ऐसा गीत रेडियो पर सुनते हैं जिससे एकदम से हमारे मन के तार बजने लगते हैं साथ साथ में, और वो गाना हमारे मन को भाता है, तो ऐसे में रेडियो का कोई मुकाबला नहीं है। आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पर अपनी पसंद के गीत प्ले करेंगे तो आपको पता रहेगा कि अगला गीत कौन सा आने वाला है, लेकिन रेडियो पर अचानक से आपकी पसंद का गाना बजता है तो जो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं वो विचार कहीं और एक बार हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और हम उस गीत के साथ चल पड़ते हैं।
1: अभी पिछले दिनों मैंने और वो जो मदर्स डे था उसके ऊपर एक नया गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की, आज मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं रहा, जैसे को तैसा था या कुछ मुझे याद नहीं है, उसका एक गाना था, तो मुझे ऐसा लगा ये गाना मैंने कभी पहले सुना ही नहीं है, लेकिन बहुत शानदार गाना था।
0: सही बात है, गाने के बोल होते हैं कुछ, और वो गाने की जो जिस तरह की ट्यूनिंग होती है, जिस तरीके से गाने को रिकॉर्ड किया जाता है या उसको गाया जाता है, उसका अपना एक अलग तरीका होता है। राजा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि गानों को आप इतना बहुत तसल्ली से सुनते हैं, और आज आपने हमारा पूरा प्रसारण सुना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हम तो ये चाहेंगे कि आप इसको अपनी आदत बना लें, क्योंकि रेडियो डिस्टर्ब नहीं करता आपको।
1: रेडियो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता सर
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात है राजा भाई, फोन किया इसके लिए शुक्रिया, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मुकेश कुमार, गांव लुटू से बात कर रहा हूँ
0: जी। मुकेश जी, यूँ लग रहा है कि जैसे इस कार्यक्रम में आपका पहला फोन है।
1: हाँ जी, पहला कॉल लग रहा है।
0: तो आज कैसे पता चला कि आपको आकाशवाणी चूरू में शामिल होना है आज के इस कार्यक्रम में?
1: सर मैं लगातार कोशिश कर रहा था।
0: अच्छा, नहीं आपने आप फेसबुक पेज देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, क्या करते हैं आप?
1: नहीं सर, हम रेडियो सुनते रहते हैं। हमारे वो मतलब पहले जयपुर काम करते हैं, महारानी कॉलेज में।
0: अच्छा,
1: लड़की कॉलेज है ना उसमें, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैरों में चोट लगी है।
0: अच्छा,
1: जब मैं रेडियो सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, अभी आप गाँव है?
1: हाँ जी, आपके सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अब तबीयत कैसी है आपकी?
1: तबीयत अच्छी है सर।
0: चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। मुकेश जी, आपने देखिए,
1: जी
0: मैं पंच बिहारी बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा सर।
0: मुकेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: ये सर हमें फूल तुम्हें भेजा
0: करते, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: आप सुनना चाहते हैं? ये गाना किसकी पसंद है, आपकी है या किसी और को सुनाना चाहते हैं आप?
1: ये सर हमारी पसंद है।
0: आपकी ही पसंद है?
1: हाँ जी।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए,
1: ये क्या क्या हम पुराने गाने सुनते रहते हैं लगातार, पहले भी कोशिश करता है लेकिन सर पहली बार फोन लगा।
0: इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हमें भी नए नए श्रोता जब हमसे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने हमें फोन किया इसके लिए।
1: ईमेल करना हमें याद नहीं
0: है। हमारा ईमेल एड्रेस है manbhavanchuru@gmail.com, manbhavanchuru@gmail.com। इस पर आप अपने जिस कार्यक्रम में आपको समय बताया गया है उस कार्यक्रम में आप अपना ईमेल करें, एक ईमेल करें और अपनी पसंद का गीत है वो लिख के भेजें। जरूर हम आपका जो ईमेल है शामिल करेंगे और आपकी पसंद को भी पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
1: ओके सर,
0: थैंक यू मुकेश जी, फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: राजेश गोठवाल निवेदन कर रहा हूँ दिल्ली से, झुंझुनू से।
0: राजेश जी, स्वागत आपका।
1: जी सर, धन्यवाद। कौन बिहारी जी, कैसे सर?
0: बहुत बढ़िया है, आप बताइए।
1: बस मौजा ही मौजा सर।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: कौन सा गीत? तो सर वो तूने ओ रंगीला कैसे जादू किया,
0: तूने ओ रंगीले,
1: लता मंगेश। हाँ, लता जी का गाया हुआ है सर।
0: गानों के शौकीन हैं आप?
1: हाँ जी,
0: गानों के काफी शौकीन लगते हैं आप।
1: जी जी, बहुत ज्यादा, तभी तो मेरा बार बार कॉल आता है सर।
0: चलिए, देखिए ये तो आपका प्यार है, हम तो अपील करते रहते हैं कि श्रोता अंतराल से फोन करें, लेकिन जब भी श्रोता हमें फोन करते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
1: जी सर, जी सर। नहीं सर, जुनून इतना है कि अभी भी मेरे को बीकानेर जाना था, रास्ते में फतेहपुर से बाहर निकल के गाड़ी रोक रखी है।
0: अच्छा।
1: और कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ।
0: कितनी देर बाद में लग गया फोन आपका?
1: कब कॉल लगे, कब मैं फ्री हूँ, हम लास्ट में जाके कॉल लगाया सर।
0: सही बात है। राजेश जी, अभी इन दिनों गाँव में क्या चल रहा है आपके?
1: गाँव में तो सर कोई खास नहीं चला, बस रोए चल रही है, कभी आंधियां कभी थोड़ी बहुत बरसात, बस यही है।
0: कुछ ज्यादा इस तरह की परेशानी तो नहीं रहती गाँव में कि जो मौसम है उसका किस प्रकार से बचाव किया जाए, क्योंकि अभी जैसे तेज अंधड़ आ जाता है, अचानक से बारिश आ जाती है, तो इन दिनों काफी नुकसान की खबर भी है।
1: जिंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी है सर वैसे तो, लेकिन मौसम क्या कि अंधड़ वगैरह आता है तो थोड़ी लाइट वगैरह के लिए थोड़ी असुविधा होती है। दूसरी बात, जो पेड़ वगैरह छोटे पेड़ है उनका भी काफी नुकसान होता है। और देखो सर, कोई चीज है वो आनी जरूरी भी है, जैसे पहले जो काली पीली आंधी आती थी अपने टाइम में, वो तो बिल्कुल ही भाई मैंने तो नहीं देखी अभी 20-25 साल में, इस सीजन देखी है। हाँ, लेकिन अगर अपने पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अपने को सूचना मिल जाए कि आज मौसम खराब होने वाला है, तो कुछ हद तक उसका बचाव हो सकता है, बचाव होना भी सही है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कहीं ऐसे पेड़ या कोई पोल के नीचे गाड़ी अपनी रोके नहीं, या कोई सही जगह देख के गाड़ी चलाएं या रोके वहां भी रोके।
0: जी हाँ, आजकल
1: धन पशु वगैरह है उनका भी थोड़ा ख्याल रखें कि कोई ऐसा पुराना पेड़ हो या पुराना खंडर टाइप मकान हो या जो उनके नीचे वाले पशुओं को नहीं रखें।
0: सही बात है राजेश जी। देखिए, मौसम विभाग के जो आंकड़े होते हैं आजकल, जो मैसेज भी आते हैं हमारे पास मोबाइल में और अपडेट किया जाता है, तो वो काफी सटीक निकलते हैं, पूरा सैटेलाइट से उनको पूरी जानकारी

मिलती है और उसी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहता है हमारी सरकार का। और आपकी जो ये जानकारी है, आपकी जो बातें हैं, बहुत अच्छी लगी है। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची है। आपने फोन किया, इसके लिए शुक्रिया। सुनवा रहे आपको आपके पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बोल रहा हूँ।
0: सतीश जी अनेजा, स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल जी, आपका भी अभिनंदन करते हैं
0: जी। सतीश जी, कैसा मौसम है चंडीगढ़ का?
1: चंडीगढ़ का मौसम ठीक है सर, अभी तो इतनी कोई ज्यादा गर्मी नहीं है।
0: गर्मी का कुछ रहता है ऐसा?
1: नहीं, गर्मी तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती हमारे। जब थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है तो बारिश के चांस ज्यादा होते हैं।
0: अच्छा, मौसम अपने आप में संतुलित रखता है, मतलब ज़्यादा, जैसे वो कहते हैं ना कि 50 के आसपास, 48 के आसपास जो टेम्परेचर रहता है, ऐसा कोई मौसम नहीं है आपके पास?
1: नहीं, हमारे तो यहाँ बस 34-35 40 से नीचे नहीं चलता है मौसम यहाँ।
0: बहुत, आप तो एकदम, हम कहेंगे कि लकी पर्सन है आप, इस बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं।
1: बस भाई, जो भी परमात्मा ने जिस हाल में रखना है ये सब उसी की योजना है, उसी के हिसाब से चलते हैं।
0: और अभी तो चूरू का तापमान देखिए लगातार 40 से ऊपर बना हुआ है, तो आप चंडीगढ़ के मौसम का हाल सुना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे देश की विविधता है, कहीं पर आप ठंड का आनंद ले रहे हैं, कहीं पर आप एकदम तेज गर्मी लू का जो एक आपको सामना करना पड़ रहा है।
1: जी भाई, चूरू के लिए दुआ करें कि उधर के रास्ते में जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबका स्वास्थ्य सही रहे मौसम के साथ।
0: सही बात है सतीश जी। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत सर सुना दो, गीत है जैसा देश वैसा देश, नेत्र प्रदेश फिल्म का।
0: सतीश जी, इतना समय कैसे निकाल पाते हैं आप आकाशवाणी चूरू के लिए?
1: ये मोहब्बत है सर, दिल से मोहब्बत है। आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया है, आज जो भी है, जो भी कुछ है, मैं तो ये सारा क्रेडिट सारा श्रेय आकाशवाणी को देता, जिसने हमें बोलना भी सिखाया है और हमारा मनोरंजन भी करता है। दिन भर सारा दिन काम भी करते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन शाम

0: मनपसंद का कोई भी गीत भी सुन लेते हैं ना आकाशवाणी से, तो सारी सारी थकान जो है बिल्कुल दूर हो जाती है।
1: रेडियो जब बजता है, देखिए आजकल ऐप के जरिए न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से आप हमें सुनते हैं, तो यूं लगता है कि चुरू के आसपास ही आप, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो साल के अंदर चार पांच बार मनाली में जाता हूँ
1: जी।
0: तो वहाँ के लाहौल स्पीति जहाँ पर मैं पहाड़ों में जाता हूँ, वहाँ भी मेरे को जब मैं राजस्थानी गोरबंद सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं पहाड़ों में चुरू वाली साइड में फिर रहा हूँ।
1: सही बात है। देखिए वाकई ये इतने सारे आकाशवाणी के केंद्र हैं हमारे देश में, और उसमें आप चुनिंदा जो स्टेशन है उनको सुनते हैं, और चुरू आपके दिल के बेहद करीब है ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा।
0: देखो सर, आप चुरू से बोल रहे हैं, मैं आपके मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहा, चुरू बिल्कुल ऐसे लगा लो मेरे को रोम रोम में बसा हुआ है और मेरे को सर्वश्रेष्ठ चैनल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, ये प्यार ये मोहब्बत यूं ही बनी रहे ताकि हम और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लिए पेश करते रहे।
0: सर एक ही बात कहूंगा, जब तक है जान तब तक है जान, ऐसे ही रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए।
0: थैंक यू।
1: सुनवा रहे आपको आपकी पसंद का गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: नमस्कार सर, मैं मैनसर से राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: राकेश जी स्वागत है आपका। राकेश जी कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: फिल्म तुम सा नहीं देखा था है, वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जीता आता है।
0: ये कौन सी बात हुई, खफा भी है और बात करने का मन भी करता है?
1: सर उस गाने की यही तो खासियत है, मतलब जिसने भी गाना लिखा है और जो धुन बनाई है आप भी सुनना, मतलब इसमें प्रेम का एक ऐसा वर्णन किया गया है कि वो खफा भी है बात भी करना चाहते हैं, अपनी सारी उसमें गाने में ख्वाहिशें पैदा कर दी उन्होंने।
0: देखिए जब कुछ रिश्ते उलझ जाते हैं कई बार न चाहते हुए भी, तो ऐसे में इन गीतों का क्या मानते हैं आप? बहुत बड़ा रोल है, अगर गीत एक दूसरे के लिए हम सुने तो उन गीतों से बात बन सकती है?
1: नहीं वो गीत वाला मैटर नहीं है।
0: अच्छा,
1: रिश्ते तो देखो ऐसे ही छोटे मोटे तो हर जगह चलती रहती है, वो चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता हो, किसी जैसा भी रिश्ता हो, ऐसे मतलब परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कभी कभार की कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन उसको समझदारी से हैंडल करना चाहिए।
0: सही बात है,
1: रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं होती है।
0: हमारी ज़िंदगी में अगर हम किसी रिश्ते में नहीं हैं तो ये मान लीजिए कि हम एक विराह जंगल में हैं मतलब, और जब हम हमारे साथ बहुत सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे सगे प्रसंगी होते हैं, तो एक अलग हमारा रुतबा रहता है, एक अलग हमारे जीवन का एक अलग रास्ता होता है, हमारा महत्व अलग होता है। और मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जो गीत हैं वो कई बार हम कुछ बातें लिख नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो आजकल तो मोबाइल के जरिए, रील्स के जरिए, और एक ऐसे रील्स भी जैसे हमारे सामने आती है, तो अगर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं हमारे किसी अजीज को, तो उससे जो बिगड़ी हुई बात है वो कई बार बन भी जाती है।
1: वो एक बंद बातचीत को चालू करने का साधन हो सकता है, अपनी व्यक्ति को व्यक्त करने का एक जरिया हो सकता है। अब अलग अलग आदमियों के लिए रहता है, जैसे मेरे लिए ये मतलब जरूरी नहीं है, मैं तो फेस टू फेस बात करने में विश्वास रखता हूँ।
0: तो आप फोन पे या मिलके बात करना ज्यादा उचित समझते हैं?
1: जी वो उससे बढ़िया कोई समाधान ही नहीं है भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी अपने जीवन के अंदर रुपये पैसे धन दौलत वो सारी चीजें है ना, वो जो कमाता है वो यही छोड़ के चला जाता है, लेकिन प्रेम का जो संबंध बनता है ना, दोस्ती का जो संबंध बनता है, वो उसके मरने के, उसके धरती पे नहीं रहने के बाद भी जिंदा रहता है।
0: सही बात है,
1: वो कभी नहीं खत्म नहीं होता है।
0: चलिए प्रेम की बातें और प्यार भरी बातें आपने हमसे की, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, हम सभी इस पर अमल करें, बहुत अच्छी बात है। ये गीत भी हम आपको सुनवा रहे हैं, फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चुरू।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रणवीर सिंह बोल रहा हूँ, पिलानी गुल्ला पिलानी।
0: रणवीर जी, हमारे नए श्रोता लग रहे हैं हमें आप।
1: नहीं, मैं श्रोता तो बहुत पुराना, 20 साल पुराना, लेकिन मोबाइल कई बार लगता नहीं। मैं काफी किसान मनाने वाले प्रोग्राम में भी लगाता हूँ, उसमें भी प्रोवाइस में भी लगाता हूँ। पहले ले हमने पोस्ट कार्ड बता करके वाला भेजते थे, कुछ समय वो भी था।
0: रेडियो सुन रहे हैं वो मोबाइल से सुनते हैं या फिर अपने ट्रांजिस्टर पे सुनते हैं?
1: नहीं, मैं ये मोबाइल से ज्यादा सुनता हूँ।
0: जी, जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप सुनते हैं?
1: नहीं सर, एक एप्लीकेशन है, वैसे गाड़ी में मेरा एफएम लगा हुआ है।
0: सही बात है। चुरू आकाशवाणी की जो रेंज है उसमें आप सीधे अपनी कार में भी, अपने वाहन में भी आप रेडियो सुन सकते हैं। वैसे देश और दुनिया में हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध हैं। आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर मैं वो अंडा कानून, अमिताभ बच्चन वाला
0: गीत के बोल,
1: अंडा कानून
0: जो आप बता रहे हैं। पिलानी जो शहर है अभी किस तरह का, क्या है वहाँ पे, कुछ खास बात चल रही है, कुछ बताएंगे?
1: खास बात तो बच्चों के बीच वाला में छुट्टियाँ पड़ रही है सर, बच्चे तो बन जा रहे हैं। और यहाँ घूमने के लिए हमने बिरला जी का बनाया हुआ टेम्पल है, बिरला मंदिर, श्री सेंट्रल गवर्नमेंट का वो म्यूजियम है, और पंचवटी है, वातावरण अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है,
1: बहुत शानदार है।
0: चलिए कभी आना होगा पिलानी तो हम जरूर आएंगे। और आपने
1: स्वागत,
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनवा रहे आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो शुरू।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं जिला बालोद्रा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति।
0: मोहन जी, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का अंतिम फोन है आपका।
1: धन्यवाद जी।
0: और कितनी देर से ट्राई कर रहे थे आप?
1: हाँ, मैं 3 बजे से लगातार ट्राई कर रहा हूँ सर।
0: और अंत में आखिर में जाते जाते आपकी और हमारी बातचीत हो ही गई।
1: हाँ बिल्कुल हुई जी।
0: मोहन जी, कैसे पता चला आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए?
1: हाँ जी, वो फेसबुक में देखा था और फेसबुक में आप देख रहा हूँ आपका।
0: उससे आप अपडेट रहते हैं?
1: हाँ अपडेट रहता हूँ और हर आकाशवाणी पे कॉल लगाता रहता हूँ।
0: वाह वाह, क्या बात है। ये रेडियो के प्रति आपकी बहुत बड़ी दीवानगी है।
1: हाँ जी बिल्कुल है।
0: समय निकाल कर
1: गवर्नमेंट में और युवाणी में ईमेल भेजता रहता हूँ
0: जी।

0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप समय निकाल कर आकाशवाणी शुरू को सुनते हैं, ये हमारे लिए
1: बिल्कुल
0: बहुत हमारा हौसला बढ़ाने वाली बात है। मोलाल जी, क्या करते हैं
1: माता किराना की रेड़ी लगाता हूँ।
0: आप? अच्छा, अभी आप अपनी जो दुकानदारी है, अपनी रेड़ी है, उसके पास ही हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल पास ही बस स्टैंड पर। नहीं
0: तो आप जब बात कर रहे हैं, इस बीच अगर कोई कस्टमर आ गया तो?
1: वो मैं किसी को दे बोल के आया हूँ, मैंने
0: अच्छा।
1: इशारा कर दिया, मेरा फोन ही चुका।
0: बहुत अच्छा लगा मोहनलाल जी। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ फिल्म का नाम है आनंद गीत है, कहानी दूर जब एक थी।
0: बहुत अच्छा गीत आपने सुना है मोहन जी, आपने फोन किया इसके लिए शुक्रिया। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
2: कहीं जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो चूरू। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर और हमारे ईमेल्स के माध्यम पर। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा गुलजारीलाल मीणा और जय सिंह डोडी का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार सैनी। अब हमें दे अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार।

0: अभी आप अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रोशन भारती को।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

रोशन भारती की आवाज को अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम सुरबहार में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपने आवाज सुनी थी सुजान सिंह खींची की। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र

0: एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़णी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज मैं हूँ आपकी अपनी सुषमा, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हमें हमेशा अपनी जो सोच है उसे बहुत ही बेहतर और अच्छी बनाए हुए रखना चाहिए, क्योंकि सोच हमेशा जो है वो सकारात्मक भी होनी चाहिए। खाली बर्तन अगर हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर खाली बर्तन लेकर के आ रहा है, तो हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि वो मांगने के लिए आ रहा है, हो सकता है वो कुछ बांट के आया हो। तो ये सब निर्भर है हमारी सोच पर, और यही जो सोच है इसी में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आजकल की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है वो गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शहरों में सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हम गांव की ओर चलें तो कितना स्वच्छ और साफ वातावरण है, और वहां पर जब हम देखते हैं कि घने पेड़ों की छाया है और चारों ओर का पर्यावरण शुद्ध और बहुत ही प्यारा सा है, तो हमारा मन भी बहुत पुलकित हो उठता है। तो चलिए सुनिए एक प्यारा सा सॉन्ग और मजा लेते हैं घने पेड़ का और ठंडी छांव का।

बहनों, चलिए अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आजकल की जो माएं हैं और जो पहले हुआ जो माएं हुआ करती थी उनमें क्या अंतर है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल है, माँ तो माँ ही होती है, माँ में क्या अंतर होता है। माँ अपने बच्चे को पालने के लिए पूरी जो जी जान है वो लगा देती है, तो फिर माँ में कहाँ फर्क हुआ। लेकिन अगर हम इसकी जांच गहनता से करें तो हम पाते हैं कि आजकल की माएँ जो है वो सोशल मीडिया पर बिजी रहती है, और जब माँ बिजी रहती है तो सोचिए हम अपने बच्चे को किस तरह का वातावरण और किस तरह का माहौल दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर माएँ जो है वो खुद तो बिजी रहती है, साथ ही साथ अपने शिशु की रील्स भी डालती है, और यहाँ से शुरू होता है बच्चे पर कैमरा चमकाने का सिलसिला। इस चमक में बच्चा बाल सितारा नहीं बनता, उसका बचपन अलबत्ता मुरझा जाता है। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए हमें रुक जाना चाहिए। अगर हम आज की बात करें तो माता पिता जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पहले कदम, पहले शब्द, स्कूल का पहला दिन, बर्थडे पार्टी या मज़ेदार जो भी शरारत है, हर चीज़ को वो कैमरे में कैद करके दुनिया से साझा करना चाहते हैं। किसी के लिए यह प्यार का इजहार है, किसी के लिए यादों का संग्रह, लेकिन बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जब किसी बच्चे की तस्वीरें, वीडियो या कहानियां सोशल मीडिया

वो एक डिजिटल फुटप्रिंट बना लेते हैं, यानी ऐसी ऑनलाइन पहचान जो मिटाई नहीं जा सकती, भले ही वह बच्चा उस समय बोलता या समझता न हो, पर उसके नाम से जुड़ी तस्वीरें, जानकारी और वीडियो इंटरनेट पर मौजूद रहते हैं। बढ़ते हुए या बड़े होने पर अनजान लोगों का चहेता बनना उसे पढ़ाई से दूर ले जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वीडियो या फोटो उसके दोस्तों के बीच मजाक या शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही जब बच्चे को बार बार कैमरे के सामने लाया जाता है, तो उसके व्यवहार में धीरे धीरे दूसरों को खुश करने की आदत विकसित हो जाती है। वह अपनी हर गतिविधि को एक परफॉर्मेंस की तरह लेने लगता है, चाहे खाना खाना हो, खेलना हो या किसी बात पर प्रतिक्रिया देना। इससे उसकी स्वाभाविकता पर असर पड़ता है और वह धीरे धीरे यह सोचने लगता है कि मेरा ऐसा करना दूसरों को कैसा लगेगा। यानी सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है। जब बच्चा कैमरे के लिए मुस्कुराना सीख जाता है, तो वह धीरे धीरे असली भावनाओं से दूर होने लगता है। यह भावनात्मक विकास के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही बहनों, लगातार कैमरे के सामने रहने से बच्चे को यह लगने लगता है कि उसकी अहमियत तभी है जब वह अच्छा दिखे या लोग उसे पसंद करें। इस वजह से वह खुद को कंटेंट या स्टार समझने लगता है, जो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर उसे यही लगता है, अपनी इमेज जो है वो उसे ऐसे ही लगती है, यानी डिपेंड हो जाती है लाइक्स और व्यूज पर। इससे उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका रहता है। साथ ही जब माता पिता बच्चे के साथ बिताए हर पल को कैमरे पर दिखाते हैं, तो भावनात्मक जुड़ाव जो है वो कमजोर हो सकता है। बच्चा यह महसूस करने लगता है कि उसे प्यार सिर्फ तब मिलता है जब वह कैमरे के लिए मुस्कुरा रहा हो। बहनों, इन सभी चीजों के लिए जरूरी है सीमाएं। तो वो सीमाएं कौन कौन सी हो सकती है, इन सभी की चर्चा करेंगे एक और प्यारे से सॉन्ग के बाद।

बहनों, बच्चा जो है वो हमें बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारी इच्छाएं भी होती है कि जो बच्चा है जब उसका बाल रूप है तो उसकी जो सारी चीज़ें यानी कि उसकी जो सारी हरकतें हैं वो हमारे पास सेव हो। अगर बच्चा बड़ा भी हो जाए तो हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको देख करके खुश हो जाएं। बहुत सारी यादें ऐसी होती है जो अंदर तक सुकून दे जाती है, और इसी में से यादें होती है हमारे बच्चे का जो बचपन होता है वो। लेकिन ये सारी चीज़ें यानी इन सब को संग्रह करने के लिए हम जो है, अगर हम बात करें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी, तो वो जो है वो फ़ोटोज़ को रखा करते थे। हमारी बचपन की फ़ोटो हैं उनके पास में, और जो तस्वीरें हैं उनको देखकर ही वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ज़माना आ गया है सोशल मीडिया का, तो उस वक्त जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि हर चीज़ को वो कैमरे में कैद कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए सीमाएं जो हैं वो तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता अपने बच्चे की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा है यानी शिशु है तो उस वक्त कभी भी कैमरा बच्चे के पास में ना ले जाएं। और इसके साथ ही साथ अगर जब बच्चा 5 या 6 साल या उससे बड़ा हो जाता है और बच्चा समझने लगता है तो उसकी अनुमति लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचे कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, उसकी परमिशन की क्या आवश्यकता है, उसे कैमरे पर आना है या उसे फ़ोटो शेयर करना ठीक लगता है या नहीं है, उसकी राय भी हमें जाननी चाहिए। ये ना हो कि बच्चे को तैयार किया और खड़ा कर दिया और उससे ज़बरदस्ती हम उसके इमोशंस जो हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जो प्राइवेसी सेटिंग जो होती है खास तौर पर, उसे भी हमें सीमित रखना चाहिए। पोस्ट सिर्फ परिवार या करीबी दोस्तों तक रखें। पब्लिक अकाउंट या चैनल से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी जैसे स्कूल, घर, लोकेशन या रोज़मर्रा की जो आदतें हैं उन्हें साझा करने से भी हमें बचना चाहिए। हर छोटी सी बात और हर पल को ऑनलाइन डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कंटेंट की जो हद है उसे तय करें और बस खास मौक़ों तक ही इसे सीमित रखें। सबसे ज़रूरी बात, बच्चे को कंटेंट नहीं बल्कि कनेक्शन का अनुभव कराएं, उसके साथ असली समय बिताएं। साथ ही बच्चे को नकारात्मक कमेंट या व्यूज़ की गिनती से दूर रखें ताकि उसकी जो आत्मविश्वास है वो कम ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ बच्चों की मासूमियत को वायरल करने के बजाय उनकी भावनात्मक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर पोस्ट से पहले सोचें कि क्या यह बच्चे के लिए कल भी उतना ही सम्मानजनक रहेगा जितना आज है। बच्चों के मन में अपने माता पिता की छवि बहुत गहरी होती है। जब वे बड़े होकर के महसूस करते हैं कि उनकी निजी बातें या असहज क्षण जो है वो दुनिया के सामने साझा किए गए थे, तो उनमें विश्वास की कमी जो है वो विकसित हो जाती है। याद रखें, बच्चे की यादें कैमरे में नहीं आपके व्यवहार में दर्ज होती है। तो जो प्यार जो है वो उसे दिखाना चाहिए, और दिखाने के कई तरीके हैं। उसके साथ खेलिए, बच्चे को सुनिए, उसे गले लगाइए, उससे बहुत सारी बातें कीजिए, ना कि सोशल मीडिया पर। उस प्यार का इजहार जो है वो इसका विकल्प कभी भी नहीं हो सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान।

0: देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: बहनों चलिए अब बात कर लेते हैं एक प्यारे से रिश्ते की, और वो प्यारा सा रिश्ता है पति और पत्नी का। ये जो रिश्ता है इसके लिए कहा जाता है कि ये तो ऊपर से बन के आता है। कई लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। चलो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी 2 अनजान व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का साथ उम्र भर निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि जब जीवन साथी किसी बात को लेकर के आपकी चिंता करता है, यानी आपको छोड़ने के लिए आता है, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन वो जो चिंता है, कहीं शक तो नहीं, कहीं आपका जीवन साथी आपको इसलिए तो नहीं छोड़ने के लिए आ रहा हो कि ये देखना चाहता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहां पर कौन कौन लोग मौजूद है। अगर इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो फिर ये दुखदायी स्थिति हो जाती है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि प्यार और शक में फर्क होता है। रिश्ते में साथी द्वारा कुछ बातें इतनी बार दोहराई जाती है कि वे फिक्र से ज्यादा जांच लगने लगती है। धीरे धीरे महिला जो होती है उसका आत्मविश्वास और निजता वो प्रभावित होने लगती है और मन परेशान हो जाता है। इसलिए समय पर ही हमें इनसे समझदारी से इन चीजों को सुलझाना चाहिए। तो सबसे पहले जब जीवन साथी है वो ये पूछे कि कहाँ हो। अगर नॉर्मली जानने की इच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल बार बार हो कि अब कहाँ हो, क्या कर रही हो, तो यह उनकी परवाह एक बार के लिए तो हो सकती है, लेकिन अगर बार बार और यह उनकी आदत बन जाए तो फिर आपको समझाना जरूरी है। और शुरुआत में लेकिन हमें यह है कि सहजता से जवाब देना चाहिए। बार बार पूछने पर स्पष्ट कहें कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर बात बताती हूँ, इसलिए यूं बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कह करके अगर हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें तो शायद कुछ हद तक सुलझ सकती है। और अगर जो जीवन साथी है वो बार बार कहे कि कहाँ हो, पीछे से किसकी आवाज आ रही है, कौन है तुम्हारे साथ, तो यह भी यही इससे भी यही झलकता है कि जीवन साथी जो है वो आप पर किसी न किसी प्रकार का शक कर रहा है और उसके भरोसे में कमी हो गई है। तो उस वक्त भी वो जो सिचुएशन है वो भी हमें थोड़ा सा हैंडल करना आना चाहिए। अचानक कभी भी पूछने पर नाराज होने के बजाय हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हम जो है वो किससे बात कर रहे थे। और कई बार ये भी होता है कि हम जब बात कर रहे हो तो पीछे से कोई दूसरा है, वो दूसरे से बात कर रहा हो या फिर आसपास खड़े लोग बात कर रहे हो, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर बार बार ऐसी स्थिति रिपीट हो तो कारण जो है वो हमें स्पष्ट कर देना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो आप बताइए, पर इस तरह से पूछना जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीजें जो है वो हमें थोड़ी सी स्पष्ट कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ कई बार जीवन साथी का जो एक आरोप होता है कि तुम बदल गई हो, ये वाक्य कई बार आता है, और जब बार बार आता है तो फिर से वो हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस वक्त भी सिर्फ यह सोचने की बजाय कि सच में मैं बदल गई होंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस वक्त भी हमें थोड़ा सा प्यार से समझा देना चाहिए कि मैं जो हूँ वो बदली नहीं हूँ, बस अब अपनी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। हम जो हैं एक दूसरे को अगर थोड़ा सा स्पेस देंगे तो अच्छा रहेगा। प्यार वहीं टिकता है जहां स्वतंत्रता और सम्मान दोनों बने रहें।

बहनों, अगर हम अब की बात करें, यानी अब एक बीमारी जो है वो कौन सी बीमारी है जो कॉमन है, जो बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी? जी हाँ, जवाब सीधा सा है, मोटापा। आजकल अगर हम देखें तो छोटे बच्चे भी हैं जिनकी खूब फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके अभाव में बच्चों में मोटापा जो है वो पाया जाता है, और जो बड़े हैं वो भी मोटे हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन हर एक के मन में आता है कि हम बिल्कुल फिट दिखें, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो शायद ये चाहत जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और ख़ास तौर पर उन्हें ये लगता है कि हम जो है वो फटाफट, यानी सबको जो है बहुत लंबा वक्त जो है, यानी पेशेंस जो है वो नहीं होता और लंबा वक्त नहीं देना होता है, इसलिए उन्हें ये लगता है कि कोई ऐसा उपचार हो जिससे हम फटाफट पतले हो जाएं, और ऐसे में वो ये सोचते हैं कि हम जो है इंजेक्शन का सहारा ले लें और जिससे हम फटाफट से पतले हो जाएं। तो जो आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है, और असल में सोशल मीडिया पर जो है वो प्रचारित है इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन है, और लोगों को ये लगता है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो इनको अपनाते हैं और जल्दी से अपना कायाकल्प कर लेते हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। लेकिन ये जो प्रचारित इंजेक्शन है, ये मूल रूप से वजन घटाने की दवाएं जो हैं वो नहीं थे, ये बनाई गई थी टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित मरीजों के लिए। लेकिन जब इनका इस्तेमाल हुआ तो डॉक्टर्स ने पाया कि इससे भूख कम लगती है और पेट जो है वो भरा हुआ महसूस होता है और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या ये जो इंजेक्शन्स है वो लाभकारी हैं? ये दवाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है जिनका BMI 30 से ज्यादा है, या फिर जिन्हें मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं, यानी ये चिकित्सीय कारणों से हुए मोटापे के इलाज के लिए बनी है, ना कि आपका जो नॉर्मल मोटापा है उसके लिए है। तो वजन जो है वो हमेशा समान नहीं भी रहता है। ये दवाएं जो है वो महंगी है, इनके एक इंजेक्शन की कीमत कई हजारों रुपए तक हो सकती है। इन इंजेक्शन के इस्तेमाल से वजन एक समान जो है वो नहीं रहता। जब तक आप इसे लेते रहते हैं तब तक वजन नियंत्रण में रहता है, और जब इसे छोड़ते हैं तब वजन जो है वो दोबारा बढ़ने लगता है। तो इन ये जो दवाएं जो होती है इनके बहुत नुकसान होते हैं। इन दवाओं के सेवन से भूख बहुत कम लगती है, व्यक्ति पर्याप्त खाना नहीं खाता, जिससे शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व मिलने चाहिए वो सब नहीं मिल पाते। त्वचा, बाल, मांसपेशियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। अचानक वजन घटने से चेहरा थका हुआ, ढीला और उम्र दराज लगने लगता है। फैट के साथ साथ मसल मास भी कम हो जाता है, जिससे शरीर कमजोर और सुस्त महसूस होता है। इसके अलावा उल्टी, पेट में गैस, कब्ज जैसी और अपच जैसी जो समस्याएं होती हैं वो भी हो जाती है। बहुत तेजी से वजन घटने पर शरीर के जो हार्मोनल जो संतुलन है उस पर भी असर पड़ सकता है। महिलाओं में मासिक धर्म में गड़बड़ी हो सकती है, चिड़चिड़ा, अवसाद और इस तरह के जो लक्षण होते हैं, यानी चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, इस तरह के लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो कई लोग जो हैं वो इन्हें सेलिब्रिटी शॉर्टकट समझकर खुद ही इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ये जो दवाएं हैं वो सेफ नहीं होती हैं। आप पतले होने के चक्कर में अपना जो शरीर है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य शरीर है, उसको हम खराब कर देते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

बहनों, आज है विश्व दूर संचार दिवस। और अगर हम इसकी बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संचार तकनीक के महत्व के बारे में जागरूक करना है, और इसके उद्देश्य हैं संचार तकनीक जो है उसका महत्व समझाना, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों को जोड़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में तकनीक का उपयोग बढ़ाना। तो बहनों, ये जो विश्व दूर संचार दिवस है, ये हमें याद दिलाता है कि संचार तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि विकास और प्रगति का आधार है। हमें तकनीक का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। और बहनों, आज संडे है, कुछ पल तो फुर्सत के मिले ही होंगे, तो चलिए अब व्यंजन विधि की ओर चलते हैं। और आज हम बनाएंगे चटपटा चीला, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर रोटी खाने में ना नुकर करते हैं, तो अगर बीच बीच में कुछ चेंज हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा होता है। और हम जो है एक ही एक चीज़ बना करके हम भी बोर होने लगते हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ नयापन आ जाता है। और जब कोई अच्छी चीज़ बनती है और परिवार वाले खा करके उसको जब तारीफ करते हैं, तो अपने आप ही हमें भी एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो बहनों, जो चटपटा चीला है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1 कप। यानी इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी किचन में मौजूद होती है, और स्वास्थ्यवर्धक और साथ ही साथ एक हमारे शरीर को पूरा जो पोषण देने वाली जो रेसिपी है इसे हम कह सकते हैं। तो गेहूं का आटा है वो 1 कप चाहिए, नमक है वो स्वाद के अनुसार, और जीरा 1/2 छोटा चम्मच, अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच, और साथ ही साथ उसे थोड़ा सा मसल लेना है, हींग 1 चुटकी, चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, अदरक का पेस्ट भी 1/2 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, और साथ ही साथ हरा धनिया 1 कप। अब जो है ये सारी सामग्री है इसे हमें एक बाउल में अच्छे से मिला लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिलाते जाएं, और इससे एकदम चीले जैसा जो घोल है उस तरह का घोल हमें तैयार करना है। घोल को अब 1/2 घंटे के लिए ढक करके छोड़ दें। अब घोल को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए। 1 चम्मच घोल लेकर गर्म तवे पर चीले की तरह ये जो घोल है इसे फैलाएं, और 1/1 छोटा चम्मच तेल या घी जो भी आप यूज करें वो लगा करके इसे दोनों तरफ से मध्यम आंच पर सेकें, तो आपका जो चटपटा चीला है वो तैयार है। आपके बच्चे को सॉस, चटनी जो भी पसंद है उसके साथ आप बच्चे को दे सकते हैं।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पहले 2 बजे मिड डे न्यूज। 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचारों के लिए। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: Feed the Silent Killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden, will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि

0: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

0: दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर

0: बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। इस गीत को लिया गया था याराना फिल्म से। इस गीत को बोल दिए थे अनजान ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की शब्द रचना को संजीव दर्शन के संगीत में। आवाजें हैं उदित नारायण अलका याग्निक की फिल्म मन।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत। आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। इस गीत को कलमबद्ध किया था इंदिवर ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम में अब आप सुन रहे हैं समीर की शब्द रचना को आनंद मिलिंद के संगीत में। आवाज है उदित नारायण की फिल्म अनाड़ी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे गाइड फिल्म का गीत। इस गीत को बोल दिए थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे बाबुल फिल्म से। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और कैलाश खैर की। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत आदेश श्रीवास्तव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी चूरू और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। और आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त केशव देव तंवर। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और आज भी देखिए टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास से चल रहा है और बाहर का जो मौसम है उसे देखकर तो पता चलता है कि लू बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है और हमारे जो भी साथी हैं वो इस समय अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, गर्मी के मौसम में शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि अधिक तापमान से थकान, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें कई प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। दिन भर में खूब पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों के जूस को भी शरीर के लिए आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम कपड़ों की बात करें तो इस समय हमें सूती या कॉटन या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि शरीर को ठंडक मिलती रहे और पसीना आसानी से सूख सके। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचाव करें। अगर निकलना आवश्यक है तो छाता, टोपी और सनग्लास के साथ साथ पानी भी साथ लेकर ही निकलें। संतुलित और हल्का भोजन करें। भारी और तला भुना भोजन कम करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। घर को ठंडा रखें। घर के अंदर कमरे में पर्दे लगाएं, पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें और हवा का उचित प्रबंध रखें। नियमित रूप से स्नान करें। दिन में एक या दो बार नहाने से शरीर में ठंडक मिलती है और ताजगी बनी रहती है। अगर इस मौसम में चक्कर आना, सिर दर्द, अत्यधिक पसीना या उल्टी जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप गर्मी के मौसम में अपना और अपने स्वास्थ्य का, साथ ही साथ अपने पशुओं का, अपने घर वालों का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM पर और सुनते रहिए आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, शिखावटी की धड़कन एक कार्यक्रम आप सुनते हैं हमारे साथ, और ये कार्यक्रम हमारे पास आप सुनते हैं हर रविवार को, और इसी के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं कि शेखावाटी अपनी समृद्ध संस्कृति, हवेलियों, लोक कला और अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ खास परंपराएं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि अतिथि सत्कार की परंपरा। शेखावाटी में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। घर आए अतिथि का स्वागत मिठाई, छाछ और अन्य पारंपरिक भोजन के साथ किया जाता है। हवेलियों और भित्ति चित्रों की परंपरा। हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र है, यह क्षेत्र अपने सुंदर हवेलियों और दीवारों पर बने रंगीन चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहलाता है।

दिखाए गए हैं। बावड़ियों और जल संरक्षण की परंपरा कम वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोगों ने बावड़ियां, कुएं और चौहड़ बनाकर पानी बचाने की अनोखी परंपरा विकसित की। ये सामुदायिक जल स्रोत होते थे। लोकगीत और लोक नृत्य। शादी ब्याह और त्योहारों पर महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। घूमर और चंग नृत्य यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। पारंपरिक पहनावा, यहाँ पर पुरुष धोती, कुर्ता और साफा पहनते हैं, वहीं महिलाओं में घाघरा, ओढ़नी और पारंपरिक चांदी के आभूषण होते हैं। रंग बिरंगे कपड़े भी शेखावाटी की पहचान है। तीज त्योहारों का उत्साह है। जी हाँ, तीज त्योहार और होली यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। होली पर चंग और लोकगीतों की विशेष परंपरा है। सामूहिक जीवन और पंचायत परंपरा। गांवों में लोग मिलजुल कर निर्णय लेते थे। सामाजिक मेलजोल और सामूहिक सहयोग को बहुत ही महत्व दिया जाता है। पारंपरिक भोजन की बात करें तो बाजरे की रोटी, केर, सांगरी, दाल बाटी, चूरमा और घी से बने व्यंजन यहाँ की खास पहचान है। दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी राजस्थान के प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन माने जाते हैं।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: दोस्तों, हम शेखावाटी क्षेत्र की परंपराओं के बारे में बात कर रहे थे, तो साथ ही हम आपको बता दें कि तीज त्योहारों की भी परंपरा होती है। शेखावाटी में त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप का माध्यम भी होते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में हम गिनना चाहें तो तीज, गणगौर, होली, दीपावली, ईद और मुहर्रम आदि कई त्योहार है जो हम एक प्रेम से, एक स्नेह के साथ मनाते हैं और आपस में एक दूसरे के घर आवाजाही करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और बच्चों को कुछ ट्रॉफी वगैरह भी देते हैं। तो ये बहुत ही सी अच्छी परंपराएं हैं हमारे राजस्थान की। साथ ही आपको बता दें कि विशेष परंपराओं में होली पर चंग बजाना है, गणगौर पर महिलाओं की शोभा यात्रा होती है, तीज पर झूले और लोकगीत होते हैं और दीपावली पर नए नए रंग बिरंगे कपड़े और रोशनी की भरमार, साथ ही पटाखों की जो लड़ियां बजती हैं उनका भी आनंद, साथ ही साथ ईद पर जो सही होती है या खीर होती है उनका स्वाद भी हम लेते हैं। अब बात करते हैं विवाह परंपराएं। शेखावाटी में विवाह समारोह भी कई दिनों तक चलते हैं। आजकल तो फिर भी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परंपराएं बहुत सी हैं जिसमें बहुत सी रस्में होती हैं, जैसे स्टार्टिंग बांध से होती है, हल्दी, मेहंदी, बारात, स्वागत, फेरों के समय लोकगीत, विवाह में सामूहिक सहयोग की भावना दिखाई देती है, पूरा गांव आयोजन में भाग लेता है और शादी की परंपरा को निर्वाह करता है। वीरता और सैन्य परंपरा। शेखावाटी के लोग सेना में सेवा देने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ के अनेकों सैनिकों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेषताएं, बच्चों को बचपन में ही साहस और अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, देशभक्ति गीतों की परंपरा भी सिखाई जाती है, शौर्य कथा का लोक गीतों में वर्णन भी है। पारंपरिक भोजन संस्कृति, यहाँ का भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यहाँ के प्रमुख व्यंजन के बारे में पहले भी हमने बातें की थी और भी बताते हैं आपको। दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, राबड़ी, गर्मी के मौसम में राबड़ी और प्याज का जो संतुलन बैठता है बहुत ही खास होता है और घी और मसालों का विशेष उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सामूहिक जीवन और सामाजिक मूल्य के बारे में बात करें तो शेखावाटी के लोग सामूहिकता और आपसी सहयोग को महत्व देते हैं। मुख्य मूल्य है बड़ों का सम्मान, सामूहिक निर्णय, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सहयोग। गांवों में पंचायत व्यवस्था लंबे समय से सामाजिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम रही है। निष्कर्ष निकालें तो शेखावाटी की परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं

कि यहाँ के इतिहास, संघर्ष, कला और सामुदायिक जीवन की पहचान है। हवेलियों की कला, जल संरक्षण की बुद्धिमता, लोक संगीत की मधुरता और लोगों का अपनापन इस क्षेत्र को अविश्वसनीय बनाते हैं। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
5: जी दोस्तों, आकाशवाणी चूरू से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी केशवदेव तंवर के साथ, और अब हम बात करते हैं कि बावड़ी क्या होती है। जी दोस्तों, बावड़ी एक पारंपरिक जल संरक्षण होती है जिसे सीढ़ीदार कुआ भी कहा जाता है। इसके नीचे पानी तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां बनी होती हैं। पुराने समय में लोग पीने, नहाने और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते थे। बावड़ी पानी कैसे बचाते हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं कि वर्षा जल संग्रह, बारिश का पानी बावड़ी में इकट्ठा किया जाता था जिससे पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। भूमिगत संरचना, बावड़ियां जमीन के अंदर गहरी बनाई जाती थी इसलिए धूप कम पहुंचती थी और पानी जल्दी नहीं सूखता था। भूजल स्तर बढ़ाना, बावड़ी में जमा पानी धीरे धीरे जमीन से रिसता था जिससे आसपास का भूजल स्तर बढ़ता था। कम वाष्पीकरण, गहराई और पत्थर की दीवारों के कारण पानी ठंडा रहता था और उसका वाष्पीकरण कम होता था। सूखे समय में सहारा, गर्मी और सूखे के मौसम में भी बावड़ियों में पानी उपलब्ध रहता था, इसलिए गांवों के लिए यह जीवनदायिनी मानी जाती थी। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में बावड़ियां जल संरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण और बुद्धिमान तरीका थी। तो आज भी हम अपने जो नवयुवक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी ऐसी बावड़ियों का निर्माण करें ताकि आने वाला समय हमारे लिए फलदायी हो, सुखदायी हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बातें और भी होंगी लेकिन फिलहाल आपके लिए एक

दोस्तों हम बातें कर रहे थे बावड़ी के बारे में और बावड़ी के साथ ही हमने जल संरक्षण के बारे में भी थोड़ी बात की थी। अब आपको बताते हैं कि जल पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे और समस्त जीव जगत जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें से अधिकांश जल खारा है और पीने योग्य नहीं है। केवल कुछ कम मात्रा में मीठा जल उपलब्ध है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन

जाता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगों का विस्तार और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण आज जल संकट गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसलिए जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जल संरक्षण का अर्थ होता है जल का उचित उपयोग करना, उसकी बर्बादी रोकना तथा भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। जल संरक्षण केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल स्रोतों की रक्षा करना, वर्षा जल का संचयन करना तथा जल प्रदूषण को रोकना भी इसका महत्वपूर्ण भाग है। जल का हमारे जीवन में महत्व है। पीने और घरेलू कार्यों में मनुष्य को पीने, खाना बनाने, स्नान, सफाई और कपड़े धोने जैसे कार्यों के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। यदि पर्याप्त जल उपलब्ध ना हो तो फसलें नष्ट हो सकती हैं। कारखानों और उद्योगों में मशीनों को ठंडा रखने, उत्पादन प्रक्रिया और सफाई के लिए जल का उपयोग होता है। जल नदियों, तालाबों और जंगलों के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जीवन भी जल पर ही निर्भर करता है। आज विश्व के अनेक भागों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं। नलों को खुला छोड़ना, अत्यधिक सिंचाई और अनावश्यक उपयोग जल की बर्बादी बढ़ाते हैं। वनों की कटाई के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कुओं और ट्यूबवेलों में अत्यधिक पानी निकालने के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जाता जा रहा है। नदियों और तालाबों में गंदगी, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ डालने से भी जल प्रदूषित हो रहा है। यदि जल का संरक्षण नहीं किया गया तो मनुष्य भविष्य में मानव को पानी बिना ही रहना पड़ सकता है। पीने योग्य जल की कमी है हमारे देश में। कृषि उत्पादन में गिरावट, सूखा और अकाल, पर्यावरण असंतुलन और पशु पक्षियों के जीवन पर भी खतरा है। इसलिए जल संरक्षण केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। वर्षा के जल को एकत्रित करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसके लाभ होते हैं, भूजल स्तर बढ़ता है, पानी की कमी कम होती है, वर्षा का जल व्यर्थ नहीं जाता है। आज कई घरों और विद्यालयों में छतों से वर्षा जल एकत्रित करने की व्यवस्था की जा रही है। भारत में प्राचीन समय से बावड़ी, कुएं, तालाब और जोहड़ जैसे जल स्रोत बनाए जाते थे। बावड़ी का भी अपना एक महत्व होता है, जो कि लंबे समय तक जल उपलब्ध रहता है, भूजल रिचार्ज होता है और गर्म क्षेत्रों में ठंडक बनी रहती है। पेड़ लगाना भी इसके लिए आवश्यक होता है। पेड़ वर्षा लाने और मिट्टी की नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं। अधिक वृक्षारोपण से जल संरक्षण संभव है और इसके लाभ भी बहुत से हैं। मिट्टी का कटाव रुकता है, वर्षा बढ़ने से सहायता मिलती है और भूजल स्तर सुरक्षित रहता है। उपयोग भी हमें अच्छे तरीके से करना होगा। नल खुला न छोड़ें, बाल्टी से स्नान करें, वाहन धोने से पाइप का कम उपयोग करें, रिसाव वाले नलों को तुरंत ठीक करें। छोटी छोटी आदतें लाखों लीटर पानी बचा सकती हैं। और साथ ही आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के बारे में भी हम थोड़ी बात करते हैं कि कृषि में अत्यधिक जल खर्च होता है, इसलिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, इस विधि से पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई, इस फवारे की तरह पानी किया जाता है। पानी की बचत होती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित रहती है और जल प्रदूषण रोकना, स्वच्छ जल को संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। नदियों में कचरा नहीं डालें, रासायनिक पदार्थों का नियंत्रित उपयोग करें, उद्योगों में गंदे पानी का शोधन करें। यदि जल प्रदूषित होगा तो उसका उपयोग कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने जल संरक्षण पर बातें की और अब आपको सुना देते हैं एक और प्यारा सा

दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शेखावटी की धड़कन, जिसमें हमने चर्चाएं की थी आज के खास कार्यक्रम में शेखावटी की खास परंपराओं के बारे में, साथ ही बावड़ी क्या होती है और यह पानी कैसे बचाती है, साथ ही आपको जानकारी दी थी जल संरक्षण के बारे में। आपको ये कार्यक्रम आज का कैसा लगा बताइएगा जरूर। हमारा एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त केशव देव तंवर को इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। शाम 7 सुनिए खेती और गृहस्थी कार्यक्रम। चर्चाएं होंगी प्लास्टिक थैलियों से मृदा संरक्षण, खेती में नवाचार के फायदे, साथ ही चर्चा होगी रेडियो और कृषि। रात्रि 8 आप सुनेंगे हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

9:15 पर हम आपको सुनाएंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा। इन दोनों कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा।

कल की पहली सभा में सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम में, सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनेंगे आप। 6:45 पर कार्यक्रम होगा गीत बहार। सुबह 7:20 से आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का अध्याय 379। 7:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चूरू। 8:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से झलकी। आकाशवाणी जयपुर से समाचार तरंग का प्रसारण होगा 8:45 से। सुबह 9:10 पर सुनिए देश गान। 9:15 पर कार्यक्रम होगा महफिल, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी कव्वालियां। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक। 10:00 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे। दोपहर 12:00 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे शकुंतला भाटी और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन, चर्चाएं होंगी संयुक्त और एकांकी परिवार फायदे या नुकसान, साथ ही चर्चा होगी बच्चों को भी सिखाएं मितव्ययता, व्यंजन विधि भी आपको बताई जाएगी। 2:30 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स।

कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 110.7 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू का प्रसारण। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त

0: गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also jointly address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business forum, along with the president of the European Commission.

नया दौर फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय

जनतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्यापत्कालेति विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ

0: संसमाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पञ्चदेशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं संप्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः, हरित परिवर्तनं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः, रक्षा, अंतरिक्षं, जलवायु परिवर्तनं, जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि संबोधयिष्यतः, यत् प्रमुखं अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 31 दिनाङ्के आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34th संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई जी ओ वी ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800117800 अनेन दूरभाष संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामी संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसन्ध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यकरणं तथा नौवहन स्वातन्त्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुमर्हति। सः वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रवाहस्य सुरक्षा विषये संयुक्तराष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः विशेष सभायां भाषणं कुर्वन् आसीत्। श्रीहरीशस्य एषा टिप्पणी ओमान तटस्य समीपे भारतीय ध्वजयुक्तायां वाणिज्यिक नौकायां जातस्याक्रमणस्य कतिपय दिनानन्तरम् आगता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्। अद्य गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज 1 तथा ग्रैमी सिटी कैंपस इत्येतयोः उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् उदयोन्मुख क्षेत्रे अग्रणी अभवत्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: केन्द्रीय नवीकरणीयोर्जा मन्त्री प्रह्लाद जोशी अवदत् यत् भारत देशेन एकस्मिन्नेव दिने 4.5 गीगावाट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचारपत्रेण सह वार्तालापे श्रीजोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः

0: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड
3: आपने तो बचा लिया दीदी
2: काम से नहीं
0: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।

0: दिशा देंगे।
1: वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
3: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन समाज की आवश्यकता ये है, भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां
2: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट

0: मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
1: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेंपल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमय संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर PMO डॉ. जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
3: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा, जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं होती है।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के ASI सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ACB के अतिरिक्त SP अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर

प्रशासन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉक्टर पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैग्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। यह अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ देती रहेगी। बीते दिनों जिले के 40 सरकारी विद्यालयों में इंटरैक्टिव पैनल और ड्यूल डेस्क वितरण कार्यक्रम रखा गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुड़को द्वारा CSR के तहत दी गई ये सामग्री बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हुड़को द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खेचड़ ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रूपए के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में भी सोमनाथ

0: महान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार एर रक्षा समेत दूजा हलका माए आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम माए भागीदारी तय करन री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री दो दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माथे स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथ है कारोबार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, सप्लाई कड़ी, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन माए बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण माए भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक थर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार वेला। आज अहमदाबाद माए मिलियन माइंड्स टेक पार्क रा पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कहो कि भारत दुनिया रा हर उभरता हलका माए अगवा बन गयो है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हलका कोटा बूंदी रा दौरा माथे पुग्या। वणा कोटा माए भीम राजपूत हॉस्टल माए राजमाता शिव कुमारी बालिका हॉस्टल री नींव धरी। ई मौके श्री बिरला कहो कि शिक्षा ही समाज माए सकारात्मक बदलाव लाए जा सके है। वणा बालिका शिक्षा रा प्रसार सारू खास कोशिश करण माथे जोर दियो।
3: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन समाज की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकाराऊ पिछड़ा और कमजोर तबका रा लोगा री समस्यावा ने निपटावण सारू खास ध्यान राखण री बात कही है। वणा गांव और गरीब लोगा सारू काम करनो नुआ भारत ने बनावण री प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर माए प्रतिभा सम्मान जलसा माए बोल रिया हा। ई कार्यक्रम माए भारतीय प्रशासनिक सेवा रा 3 नुआ चुनिजा एहलकार और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद रा 59 नुआ नियुक्त एहलकारा रो सम्मानी करीजियो। राज्यपाल आखरी छेड़ा रा मिनखरी आवाज सुनने और चुनिजा जन नुमाइंदा रे साथे चोखा व्यवहार करन री अर्ज करी। देश रा भारतीय प्रौद्योगिकी

0: सौथी सारू होण वाली जेई एडवांस परीक्षा 2026 रो आज आयोजन करी जो इन माय जेई मेंस माय कामयाब रहण वाला 2.5 लाख पढ़ेसर भेड़ा भी आ आईआईटी रुड़की कानी आ परीक्षा कराई जी ही कंप्यूटरी मार्फत आ परीक्षा दो पारिया माय भी केंद्र सरकार चांदी रा आयात माथे रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय कानियों जारी अधिसूचना मुजब चांदी ने कई वर्गारी फ्री सूची माऊ हटार इनने प्रतिबंध वाली सूची माए डाल दी जा है। आ पाबंदियां रे कारण अब बिना सरकारी मंजूरी रे कोई आयात या जेवरात कारोबारी विदेशों चांदी रो आयात नहीं कर सकेला। गैर जरूरी आयात ने कम करण और विदेशी मुद्रा रा खर्च माथे लगाम लगाउन सारू ओ कदम उठाई जो है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो एर वहाँ जुड़िया फोटो एर वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री ईंधन बचाने री मुहिम में जन नुमाइंदा अहलकार और लोग ही आपरी भागीदारी तय कर रिया है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर सफर रेलगाड़ियों पूरो करियो। ई दौरान वणा यात्रुआ रे साथ बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाउन री अर्जी करी।
1: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास ताई रो सफर ई रिक्शाओं तय कर ने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर माए लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम माए लेवन री अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा वना महल परिसर माए चादरिया विकास ए संरक्षण रा कामा रो जायजो लियो। सैलानियारी बदती अवैध न देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगन वाला मार्ग ने और बेहतर बनावन रा निर्देश दिया। वना डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावन ने लेर एहलकारा ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
2: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क IGNCA के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: हर साल 18 महीने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इन रो मकसद संग्रहालय री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावो देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक माए आवण वाला सगला सारू प्रवेश मुक्त राखी जो है। वठे इनु एक दिन पहला आज जयपुर माए हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इन री मार्फत शहरी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावण और उनरा संरक्षण रो संदेश दिरी जो। कोटा माए प्रसूतामारी मौत एर किडनी फेल होन रा मामला माए काले दिल्ली MCA टीम कोटा रो दौरो करियो। इनरी जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीचे अजे ताई 16-32 महिलाओं री किडनी खराब होन रा मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माए भर्ती एक और प्रसूता इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाली संक्रमण अजे ताई 5 प्रसूतावां री मौत वह चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश माए न्यारा न्यारे ठोड़ा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गया। आम आए विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर री जांच करी और इनु होने वाला नुकसान रा बारा माए जानकारी दी। ई कड़ी माए झुंझुनू रा BDK अस्पताल माए शिविर लगाई जो। ई मौके PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने BPU होने वाला बुरा नतीजा री जानकारी दी। वना कहो के भगत माथे इलाज नहीं करावन माथे इनु कई चिंता जोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
3: रक्तचाप के

0: गंभीर बीमारी के रूप में आमजन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आमजन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निःशुल्क जांच पीटी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा, जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा एएसआई सुनील बिश्नोई ने 1,00,000 रुपए की घूस लेवता गिरफ्तार किया है। एसीबी रा अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म री कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने री एवज में मांगी ही। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुएगी। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते हुई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार रे बेकाबू वेर पलट जावणो उनमें सवार 3 लोग मौका माथे दम तोड़ दियो, वठे 3 दूजा गहरा घायल वे गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठी ने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार ए रोडवेज बस री टक्कर वेगी, जिनमें 4 लोगों री मौत वेगी और 4 गहरा घायल वे गया। उठी ने पाली जिला रा देसूरी हल्का में घाणेराव गांव में दूषित भोजन काम में लेवणो 11 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लारला हफ्ताओं मौसम में चाल रो उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फिर तेज होवण लाग्यो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में तापमान में और बढ़वार और हीट वेव रो असर रेवण रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवण री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू बत्ती असर देखियो जावे। ई बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चाल रियो है और रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठे करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार नापी जियो। डीग जिला में खेती महकमा कानू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चलने वाला ये अभियान के तहत खेती महकमा री टीमा दुकाना और खाद बीज और कीटनाशक रा नमूना भेड़ा करेला, इनने प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जायला। मैं अबे आखिर में खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करने री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नेंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना सगले किसान भाया ने गोपाल भाई कानिसियो
1: और भाई अरविंद कनियो मोकला मोकला
0: राम राम। तो अरविंद भाई देखो के मौसम को जो मिजाज है वो तो धीरे धीरे है जो गर्म हो लागो और गर्मी गे फागिड़ो यहाँ धू काटना रो सोई काम हो रही है भैया। तो खेती की दृष्टि में देखा जो तो देखो का तपेड़ है बढ़िया क्योंकि मने डेढ़ मने जो धरती तपगी जच के और किसान है जगह दिन के आथन के आपका लगा के चाहे हड़िया पार्टी कराओ और चाहे ट्रैक्टरों कराओ खेत जगह यही बने एकदम रड़का के छोड़ दो ताकि कोई कीड़ो कांटो है जमीन में कोई प्रकार की गड़बड़ है तो बा इतावड़ी के लागने से जिकी खेत की माटी है मृदा

0: की है, वह एकदम देखो के अगली फसल के लिए तैयार हो जी सी। और दिन के आथन के अपन खेत जो है वो जरूर जानो चाहिए, हड़कोड़ को जो काम है जिससे हो वह टेम सारू भी साबू अपने करते रहन में, ताकि आगे जब बिरखा चालू होगी जब आपने तड़ातड़ी न हुए काम जो को अब कोई बाकी नहीं रवे एर नित बड़ी है, हैं जे खेत में जावार जे किलो आज शेर जे सांगरी तोड़ के लिया वहां तो बताओ खोवा के हैं ग्राजे बकरी है एक रोटियों पान लिया वहां लूंग को हरी को तो एक तो खेत संभाले गयो पैदल घुमाई होगी बकरी खातर हरी लूंग एज की आगी लकड़ी एज की सूख जा पांच दिन में वह बालने काम आ जा खेत संभाले जा एर देसी जी सब्जी है सांगरी की भाई मौसम अबगाल गड़बड़ी रहे हो तो जिसी लागनी चाहिए विशित कौन लागी पर छिद्दी माड़ी कोई जांटी का एक जंटी है जे लाद है निसनी गाल के और जे एक सब्जी की भी लिया हुआ तो प्याज मिला के मार बनावा दे एकदम देख लियो थे है जोरदार सब्जी बने। तो धीरे धीरे जगह खेती बाड़ी का काम है वे अपन राखना ही पर गर्मी की टेम है और गर्मी भी देखो कि तेज है तेज पड़नी भी चाहिए मानो स्वभाव है कि ज्यादा 40 से ऊपर ना बढ़े नहीं सुई तो तकलीफ होए थोड़ी बा देखो के पशु पक्षी के भी होए आदमियों के भी होए सेंके भी होए पण देखो के वो तो सुख और दुख दोनों सागे चल रहे जे तावड़ी नहीं पड़ेगी तो खेत जगाई बैकियां रलकेगा हैं तो तावड़ी भी जरूरी है पण आपा ने ध्यान और राखनो है कि दिन में 10 बजे से लेके 4 बजे तक को जो टाइम है ना वो चाहे खेतीबाड़ी को काम होए चाहे इन्हें मिने कटाई जाने को काम होए वो अपन टालनो है और जे जानो बहुत ही जरूरी है कि भाई जानो ही पड़सी तो अपन या बस को साधन है या गाड़ी को साधन है वो अपन देखो के अपनानो चाहिए। सुतु घबा जगाई ढीला ढीला जिकम पूरा डील का हवा लाग बोक रहे सिर झुको है एक ऊपर चाहे टोपली लगाईड़ी होवे चाहे तोली होवे बानेड़ो राखनो चाहिए और पूरे शरीर को जाप तो झुको है वो अपन राखनो है। पानी झुको है ने मिठो कुंडारो वो अपन पीण वास्ते देखो के सागे राखनो चाहिए। खाली पेट घरों अपन भूखो कदे ही को निकलनो है और ज्यादा ज्यादा जगह तरल पदार्थ है चाहे छा है राबड़ी है रायतो है बिल को पानी है नींबू पानी है प्याज है पुदीनो है आपको ज्यादा ज्यादा अपन इस्तेमाल करना है ताकि अपने शरीर को जो टेम्परेचर है वो बने रहे शरीर में पानी की पोषक तत्वों की कमी जिकी है वह न हुए कदे ये नहीं हुआ कि ज्यादा तावड़ी में हर कटे चक्कर आगे पड़ गया और कोई संभालना रही को नहीं मिले तो खाली पेट अपन घर से कदे को निकलना है। भोजन जो है वो अपन टेम टेम पर करते रहन वे तरल पदार्थों को भरपूर सेवन करो चटपटो और तेल को अड़ंगो और जो है ने मिठो चीटो जो आपने जच्चे नहीं भी हूं आपने बचनो है ताकि आ काया रूपीज की गाडुली है एक मां कोई प्रकार की खराबी नहीं होवे और आप खेती बाड़ी काग सब्जी काग डांगर डोरकार घर गृहस्थीकार संसार का सारा जगह काम है वन आपा टेम पर पूरा कर सका।
1: भाई अलग अलग टेम के ऊपर देखो के ऋतु की बात कर लो चाहे मौसम की बात कर।
0: हाँ हाँ
1: अब बारे ताती लुआ को जो को बक्तन है और तावड़ो है जो को देख लो के 7-8 बजे के बाद में तो यहाँ चोटी खड़ी कर दे तो आपने कदे ही कोई चीज पे काम करता वहां तो एक तो लालच नहीं करना
0: ठीक बात
1: है भाई थोड़ो सो ही तो काम बच्चू है।
0: हाँ हाँ
1: अब वो थोड़ो सो काम है बी के चक्कर के मैंने आपा कठन कठे अभी तावड़े की चपेट में आस का तो आपने दिन के आथन के ही आपको काम करकी
0: सही है
1: और जब तावड़ो जोर को हुआ है
0: हाँ
1: विशेष तौर अपन ख्यात वो राखनो है कि एक तो के तावड़ो वर भी सग सग हल्की हल्की हवा चलती हो मैंने
0: हाँ हाँ
1: जब वो तावड़ो तो के आदमी का असर कौन करे।
0: हाँ
1: और कई बार आपा देखा कि मौसम एकदम गुमसुम हो जा तो ही हाल तो दिखे को नहीं कटे
0: हाँ
1: और भी वक्त के मायने

0: तावड़े की चपेट में आ गया
1: हाँ।
0: तो अमान की चलो के कई दिन अपन ने डॉक्टर आगे घूम चक्री काटनी
1: हाँ, फिर 15-20 दिन को मने को कोई निमेड़ को नहीं।
0: तो बीसी मौसम के महीने कोई भी तरीके की लापरवाही अपन खुद ने अपने पशुधन ने के लिए
1: सही बात है
0: सब के लिए अपन ख्यात रखने वाली चीज है। और भी के संग संग देखो के अबार को जो वक्त ने ठीक है थे बतलावन करी के सतो सतो जो काम हो ने
1: हाँ।
0: भी की ओड को नहीं हो और आप ठहरा किसान
1: हाँ
0: किसान ने देखो छठ बारू मने दिन के उले की आथन के तानी खेत के मैं रीजनो पड़े
1: हाँ।
0: तो भाई वो गर्मी को मौसम है ई के मैं भी आपने खेत में तो जानो तो पड़सी नहीं जावांगा तो क्या पेश पड़ेगी
1: भाई किसान और कैलेंडर में छुट्टी तो है ही को नहीं
0: बस छुट्टी है को नहीं तो अपन देखो दिन के आथन के आपनो काम करकी
1: हाँ हाँ
0: और अपनी गाडू ली है जिकने गुड़ानी है
1: सही बात है
0: और विशेष तौर आपा ने अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है अपने पशुधन को भी ध्यान रखना है और खेती बाड़ी को भी ध्यान रखना है। अब जी यहाँ थे बात करी के भाई सागेड़ो अगर तावड़ो और धरती नहीं तपेगी तो भाई खेता में नाज घटूंगा
1: सही बात है
0: अभी जरूरी है लेकिन जरूरी है तो ब्यू क्यों क्यों सावधानी हिंज की आपने रखनी जरूरी है
1: रखनी पड़ सी
0: और मैं सावधानी रखांगा जब तो देखो के आपा भी चाल बो करांगा
1: हाँ।
0: और बा सावधानी कठन कठा आपा लापरवाही बरत गया
1: हाँ।
0: जद देखो के आपा तावड़े की चपेट में आवा
1: सही बात
0: और तावड़े की चपेट में चाहे आपा खुद आ जावा चाहे आपनो पशु धन आ जा
1: हाँ हाँ।
0: फोड़ा फेर है जो को कई दिन का पड़ जा
1: भाई भी कुल मिला के देखो नुकसान ही है और सावधानी राख सिया तो भाई आपने देखो फोड़ा कौन पड़े और जे आपा देखो कठिन कड़े जे चूक कर सिया गलती कर सिया तो देखो के खामिया जो है जो आपा ने भुगतनो पड़सी तो ई खातर एक तो किसान भाई ने कहना चाहूंगा के भाई कपड़ा लत्ता को जो को विशेष ध्यान रखो के सुतू गावा पैरो ढीला डाला गावा पैरो और होश के जट के जिया धोड़ो रंग है ने वो प्रकाश को परावर्तन करे तो जगह गहरे रंग का कपड़ा ही पे आपा नहीं पहनना चाहिए दिना कमा गर्मी का महीने और धोड़े रंग का जगह कपड़ा ही या भी मिलता जुलता जगह घबा ही भाई आपन सीमा के सुतू पहनना चाहिए तो भी के डील का हवा भी लाग वो करे और पीछे न्यो जे थोड़ा बहुत आलो भी हो जाने अरे हल्की हल्की हवा चले तो भी एक प्रकार को जो डील है ने बिन के ठंडक महसूस हो गए है और नींबू पानी है अरविंद भाई वो दिन में एक दो बारी मानस ने जरूर पीनो चाहिए तो भी के आपनो जो को रक्तचाप है ने वो भी एक संतुलित बने रहे नींबू की भी गर्मिया का वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी हाँ बील पानी आप बनावा और बील बनावा भी बील का वहां 2-3 नींबू टेक दो अरे स्टील आला जगह बुडोड़ा गिलास है ने के बिला नारा भाई दिन में जी हाँ दो ही टेक लिया ने तो भी वो अपनी जी मशीन है भाई एकदम धड़ा धड़ चाल सी है गर्मी की वजह और जी कोई गड़बड़ होती दिखसी ने तो वो निमड़ो जुगो है ने वो सोदन जचाड़ो राख सी अरबी के अलावा जी छा है राबड़ी है पुदीनो है प्याज है कुंड को मीठो पानी है गड़ा बरेड़ा रखो घरा में आराम को ज्यादा में ज्यादा इस्तेमाल करो पड़े सागे सागे देखो के एक बात और भी कहनी चाहवांगा के भाई खेती की तैयारी में ही लाग रही और किसान तो हमेशा लगे ही रहे चाहे बा खरीफ की बात हो चाहे बा रबी की हो चाहे जायद की हो एक देखो संकट और हो गयो के एज की प्लास्टिक की थैली ने अरविंद भाई ने तो शहरा में नावड़े ने गांव में नावड़े ने नालियां में नावड़े कट्ठे को नावड़े हैं पुराने टाइम के मां कोई चीज बस्त लाने शहर में आता बूढ़िया तो पल्ली ले आता तो पल्ली ले आता और सागे वे सूतली इंज की गोजी गमा रखिया करता भी पल्ली में सामान तुला तुला गेर वे पिंडिया सा होके ऊपर जेवड़ी हिसी देता वे गांठ है के वे खोली गुन खुलती घरा जागे वे खेसता ने जदि वा खुलती एर आपका घरा लिया था ने तो पाटने को ने खिनने को कटे कोई किलो लागियो पाती लागी अब प्लास्टिक ओढ़ूंगे बाजार मीने मीने जावा देखा है ए सांड को दाई जगह कोई सींग गाल दे कोई का करतुम देर बाद थैली है जी सड़क पर परीर पड़ता ही वो सामान है जगो सही है तो कुल मिला के नुकसान है।

0: फिर इन जे जड़ावा तो यूं उसकी गैस निकले प्लास्टिकों बा देखो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। जे रेत में बुरा तो आपने खेत की माटी खराब होगी, नालिया में रीने बिने शहरा में आपा देखा इसी चौड़ी चौड़ी नाली पण बंग मा ए थैला जगाई है ठोक ठोक के और बह देख लो ते भरिया पड़े चार मेरो बीर खावे भी टेम वो पानी को जोर लागे ने तो कटे कटे बे नाला फुटड़ो भट्ठा देखो थे बे थैला इंजगाइया लागे जाने कोई जमीन मुंह निकले हैं। तो ए थैली इंजगी देखो के हम पर अपन रोक लगानी चाहिए। घरांगा मां पुराना घबा इंजगा नावड़े को नहीं थैला अपन रखना चाहिए। अपना बडगा जी पल्यांगा मां सामान लिया करता तो आप जी थैला में गाल के या थैलो आप सागे रखा तो बिम के आंट है कौन सी शर्म की बात है। और थैली में जी आप सामान गाल के लिया और हर कटाई उजाड़ हो जा हैं तो बिम कौन सो आपन कोई सामान मिल जाएगा थैली में सामान गाल के चला जाते। ये प्लास्टिक का तो नुकसान ही नुकसान है और गड़ा में तो कूटलो भेड़ो गयो और फिर खाद के सागे वो देखो के खेतम पुग गयो खेतम जाने सियूं बे इतना थैला रबड़गार ए भांडियार केवरो केकेड़ा प्लास्टिक और कोपड़ार प्यालार चमचड़ा इंजगा है ए टेगड़े सियो आपने खेत की जी मृदा है बाद देखो के खराब होगी। तो ई बात पर अपन गौर करनो पड़सी का गाड़ी है जी कितना दिन चलेगी
1: है। चाहे गांव की बात कर लो चाहे शहर की बात कर लो जितनी जी गंदगी हो भी मैं सहना हूं ज्यादा और वो प्लास्टिक ही है।
0: हाँ प्लास्टिक है
1: और गंदगी के अलावा जकी भाई प्लास्टिक के अलावा जकी गंदगी हो ने बात तो देखो प्योर खाद है लेकिन भी के मायने 70% एक लो प्लास्टिक हो
0: प्लास्टिक है।
1: और आपा देखा का अपना किसान बहन भाई जका अबार को जको वक्त है जके के मायने खेता के मायने पाड़ करकी और खाद छिड़करा के तो भी खाद के मायने भी देखो आ सिचुएशन लाजिया अधिक प्लास्टिक लाजिया
0: बताओ
1: क्योंकि आ ने तो कई साला तानी गले
0: कोनी गले और ने की खाद बने
1: खाद बने तो वो दूजो है जो को एक जगह भेड़ो की और वो आसे पासे कठे कोई दानो उगन दे कोनी
0: नुकसान करे
1: तो आ हर चीज के मायने नुकसानदायक है। अपन खुद ने यूं बचनो चाहे और आपने खेत के मायने जकी खाद गिरा
0: हां हां
1: भी के मायने आपने विशेष तौरों ख्यात रखनो चाहे के भई जकी खाद आपा आपने खेत के मायने छिड़क रिया
0: हां हां
1: बिन कोई भी रूप के मायने प्लास्टिक नहीं गिरा।
0: सही बात है
1: प्लास्टिक नहीं होनो चाहिए। अगर जे आपा एक गड्डो खाद गिरी
0: हां
1: और भी में पांच मैनिया भी अगर है प्लास्टिक का आ गया ने
0: हाँ।
1: तो बापरली खात गेरड़ी न गेरड़ी बराबर होगी
0: बा बेकार होगी।
1: क्यों के खात तो है जो को कटन कटा है आपने खेत की माटी के लिए लाभदायक है लेकिन भी के सागे अगर है प्लास्टिक जारी है
0: हाँ हाँ।
1: तो बहुत नुकसानदायक है
0: भाई। मेरे तो आज समझ में कुछ नहीं आई अरविंद भाई के इतो पढ़ो लिखो मानस है समझदार है सन भेरू है भी के बाद में भी आपा देखा गांव में भी जिया कोई ब्याह शादी कोई बात सूचक हो है तो भी कमा देखो के जद जीमने की चा पानी की बात आवे चा पीने की बात आवे तो वे कपड़ा प्लास्टिक का है वन ने तो पकड़ सके ऊपर तक जो बेरेड़ो है तो होठ बढ़ जा जे थोड़ से ज्यादा पीछे गयो तो घाबा में पड़ जी सी चाहे बात चाय हुए चाहे कॉफी हुए है चाहे नींबू की चाय हुए। फिर कोई जे जूस बना रखी है तो भी का गिलास यही तो भी प्लास्टिक का प्लेट में जीवनारी भे प्लास्टिक की चमचड़ी का निगेरा रखे के खरलो भे प्लास्टिक की। फिर कोई दाल ले तो दाल की प्याली जकी भे प्लास्टिक की है और क्यों अड़ंगो है तो प्लास्टिक को। तो भाई जब अपन ही बात को बेरो है को जहर है। अब प्लास्टिक की जगी प्याल की भी तत्ती दाल आप गाल इम की अगर रासायनिक क्रिया हुए या चाय बना के गर्म भी में कोपड़े में घालता ही और वो मान लो के मीठो जहर बन गयो है वो आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। दाल जे भी गाली तो बाद दाल खराब है अपन खानी नहीं चीज़ है।

अपन जिदा बातों को बेरु है के कोई भी एंगलों जिदे प्लास्टिक है बनेड़ा उत्पादों फायदो कोनी नुकसान ही नुकसान है पर बेबी का बाद में मैं देखो के दुनिया का समझ में तो कोनी आवे अच्छा फिर के करें के ब्यावड़ा रो काम हो जाने और भर भर के बठले हैं और सा इन्ने मिने वे जगह देखेंगे खड्डो खटे सी कह के कोई बाढ़ती के सारे वह बोरा भर भर के वह प्यालड़ा और चमचड़ा और वह प्लेट और थाली अब आजकल के गर्मिया में वह ढूंढ पाटे दिन में हमें भूंगोलिया 12 बजे 1 बजे सी है चोटियारा अब चोटियारा हमें अरविंद भाई जो बम वह चमचड़ा और प्याल की वह थैली वह देख लो तो चट्टे आकाश के माइन है तो एक अलग ही तरह को नजारो है अब वो अड़ेंगे वो खेता में खटे खटे वो उड़ा के पूरे गांव के मां गंदगी है कोई भी आप उजनारो को नहीं भया थे जी इन काम में लिए है तो कम से कम कोई दरड़ो खड्डो खोद के कम से कम बूर तो दो तो अड़ेंगे पूरे गांव में तो कौन फैले पर भाई एक कई समझ में कोनी आवे आई कहानी शहर की है कोई भी घर में प्रोग्राम है मोटर तीज की नाली बननी या नाला ही कट्ठे न कट्ठे बे फुटेड़ा हुए अब वो आपको काम काट दो और भर भर के बटला ही जब नाला में ठोक दे अब नाला ही नहीं बे देख लियो तेरे पास नाला गई जाग आ रही है आगे जब बिरखा की टेम आवेगी मोकलो पानी पड़ेगो भी टेम देखो नाला में जान खातर जगह ही को नहीं है कह चमचड़ार प्याल गिर गिलास यार थाली रे जगह ही थैली आकी डाट आ रही है तो बताओ जब हरेक आदमी या आंख मीच लेसी तो पियो देखो पर्यावरण तो दूषित हो रही है फिर हिणा जगह पशु ही डंग रहे वे खा खा के बांगे पेट का मां लड्डू बन रही यहां थैले और जगह जगह आप देखा मरेड़ा पशु इन्हें भी नहीं तो बांगे पेट का मां वे फुटबॉल जगी होने खेलना है पियो ठाडा ठाडा वे गेंद जगाई प्लास्टिक की थैलियां का क्यों कब हम छूत का सांत का गाल के दे के गांठ फेंक दी मारे पशु आवे भूखो वो खाने के चक्कर में वो फार ओढ़ूंगा पेट में जा अब प्लास्टिक है भी को के बताओ ते रस बने और के वो शरीर में गले आंतड़ियां में फंस के लास्ट में पशु की है के मौत हो जा अब सन बेरु है के इका नुकसान ही नुकसान है तो अभी भी आपने टेम है के वो प्लास्टिक को बनेड़ो अड़ंगो है इन कम कम देखो के इस्तेमाल ले पहली ब्याह शादी में थाली बे स्टील का गिलास होया करता चाहे पानी पियो चाहे दूध पियो चाहे कोई जूस पियो पांग मां पीने को आनंद हो हैं और जमीन पर बैठ के स्टील की थालियां में वो भोजन करता चाहे भी लड्डू बूंदी है और साग सब्जी हो खा के आदमी है जो लठ हो जातो हैं अब है खड़ा तो खाना चल गया और सारो अड़ंगो प्लास्टिक और तातो वो गाल गाल के भावे तो भावे नहीं माने वहां बाल्टा में फेंकिया करो कुरड़ो और चाल मेरा भाई है तो कितो तो देखो के अन्न को अपमान हो रही है कोई भी ब्याह शादी हुए सामाजिक समारोह है आज भी कमा आदमी आपके हिसाब देखो बढ़िया बढ़िया देखो भोजन जो है मिठाई जी वह बनावे पर बताओ अब किन किन कह भाया तेन भावे बीती खाओ आ तो एक खुद के सोचने की बात है हैं पर वह थाली प्लेट जठे भी भेड़ी करे ने बठे जाके वह बर्तन माजने बाग कन जाके देखो ते है कह जो जरूरतमंद हो बिन वह मिठाई का आप खान वास्ते देता तो भी की कितनी आशीष मिलती वह भी चौकी तरिया खा के और सुख की नींद सोता है अभी फलान जी के बेटे को ब्याह हो और मारे ग्रां देखो कह 5 किलो फलानी मिठाई है जी की दे के गया पणबा को नहीं है प्लेटांग मां दे दे के डांग भावे इति भावे और बाकी फेंकी प्लेट चल मेरा भाई तो कुल मिला के जट्ठे देखा ने जो एक पढ़े लिखे जो समाज है विकासा देखो लक्षण जगह खटे दिख रहा को नहीं तो आम देखो का अपन सुधार करनो चाहिए जाए और प्लास्टिक उन अपन ने देखो का जीतो आप बचांगा ने भी तो आपने स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के लिए पशुधन के लिए और खेती की दृष्टि फायदा ही फायदा ही और जे आप आंख ही मिचड़ी रखांगा जद भाई देखो के कोई इलाज को नहीं तो ये खातर है उम्मीद करांगा अपना किसान भाई ये बात पर जरूर गौर करेगा और अब पप्पू मस्ताना की आवाज रमाई एक लोक रचना आपा भी सुना और आपने किसान भाई ने भी सुना देवा।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: हाँ, तो अंतराल से पहले आप पप्पू मस्ताने की आवाज रमाए लोक रचना सुनी, लगन बिना जागे रे नर कोई। अरविंद भाई, किसान जो है बी के खत्म, देखो हमेशा मेहनत ही लिखेड़ी है, पहली भी करता। अब पहली जब मशीनरी कोनी तो पसने को काम है जो को बहुत जोर को होया करता है। पशुआ की तरिया देखो के पसनों पर तो दिन रात जद जागे के को खेती बाड़िया रो नाच दाने को काटने को घरान लेने को फोड़ा ही फोड़ा। जिया जिया विज्ञान है वा उन्नति करे गयो, कृषि का उपकरण बनया, तो भी उनकी अगर किसान के क्यों शुभते हो। तरह तरह का देखो के खेती बाड़ी का मां जिया सोच समझ बढ़ती गई ने, बिया बिया अपना जगह किसान भाई वह देखो के नवाचार जगह ही वह करना चालू करया और पीछू की एक बंग जीवन का मां और क्यों सुधार है जगह हो। बिके सागे सागे सरकार जिकी बाकी भी देखो के तरह तरह की जिकी लाभ की फायदे की जिकी योजना ही वह चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है वह चलाई और ज्यादा से ज्यादा किसाना देखो जोड़ना रो काम है जुको करियो। तो बीसियों भी आपने किसाना के देखो के 2 रुपया को फायदो है, बचत है बहुने लागी और किसान ने पिसा खातर देखो के इन्ने बिने बाजदौड़ करने को जुको काम हो वो क्यों कम हो। अब पुराने टेम में एक ढरो के ठीक है खेता में भी

0: आवड़ी तो बे एकदम फिक्स ही के ये आवड़ी मां बाजरी बावंगा एक मां मूंग बावंगा एक मां मोठ इम चवड़ा इम तिल पे जचेड़ा क्यों के बरसों बंगा बड़का जका हा माइत जका हा बे खेती कर करके भी जगह को हिसाब किताब है वो नापेड़ो राखता क्यों के भी टेम के मां जिया मिट्टी पानी की जांच है या जिया कृषि विज्ञान केंद्र है तो आंकी सुविधा कोनी और आंकी सुविधा न होने से किसान जगह आवे खेत में ही आपका किएगा प्रयोग कर करके खेती बाड़ी करबो करता पंगो जिसे उत्पादन हो तो भी साहब मैं देख लेता है कि भाई 88 आज की 5 बीघा जगह है आप फसल है जी चौखी हुए अब चौखी होने को कारण हो गयो के कोई भी फसल जब आप लेवा तो खेत की माटी का 17 प्रकार का पोषक तत्व जरूरी और वह भी सगड़ा एक संतुलित मात्रा का मायने क्योंकि सही अनुपात में जब अपनी फसल ने किए गए पोषक तत्व मिलने जदि भी की बढ़वार जी है वह बढ़िया हुए भी क्या फूल है फल है वो चोखो हुए भी चूंकि अनाज को उत्पादन है जो बढ़े पशुओं के लिए अपनो चारे की व्यवस्था है वह हुए और अनाज ने जब किसान खेत में बेचने जावे तो बढ़िया अनाज होसी ग्रेडिंग करेड़ो होसी तो देखो के किसाना के भी 2 पैसा इंजगा सावल बनसी
1: भाई 5 पैसा फालतू की आमदनी है जिकी हुए
0: हाँ
1: और भी के सागे सागे और जो को तकनीकी युग ने
0: हाँ
1: ये तकनीकी युग का मैंने भाई पुरानी किसाना की थे बात करी
0: हाँ
1: मैं इतना पढ़े लिखे कोनी हो
0: कोनी आसा
1: लेकिन आज लगभग जिका किसानी जिका के एक पढ़े लिखे किसानी और बे सारी तकनीकीन भी समझे
0: हाँ
1: बहु अच्छी तरीके वाकिफ होवे
0: हाँ हाँ
1: और भी के सागे सागे चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो
0: हाँ।
1: बाकी 1000 तरीके की जिकी योजना चले ने बांक के बारे में भी मैं जानकार हूँ
0: ठीक बात है
1: और अबार को जो किसान है पढ़ो लिखो जो किसान है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ।
1: के क्या खेती बाड़ी के मायने 1000 तरीके की जिकी योजना री
0: जी
1: बांक को लाभ ले की और आपनी जिकी परंपरागत जिकी खेती होया करती बिन छोड़गी नवाचार करकी कम जमीन के मायने और पहली आड़ा जीती पैदावार लेता भी हूँ कई गुना ज्यादा पैदावार है जो को अपना किसान बहन भाई अपनी आंखों के सामने ले रहे
0: हैं सा
1: और भी हूँ आपके घर की जिकी गाडू ली है ना
0: हाँ।
1: धड़ा धड़ फर्स्ट स्पीड में भाजती जा रही है
0: सही बात है
1: भाई पढ़ाई लिखाई की जगह आज पुरानी जमाने ने देखा आज ने देखा तो पढ़ाई लिखाई भी खूब महंगी होगी भाई टावरा पर 1000 तरीके को खर्चो लागे
0: सा
1: घरां भी है जो को कोई कारण का वो काटे तो पुरानी आज का कारण का वो काटता भी ना कई गुना में भारी है जो को कारण का वो काटे
0: पिसा तो बड़ा लागे
1: अबार के एक आर्थिक युग आ गयो
0: हाँ हाँ।
1: पैंड का ऊपर है पिसो लागे
0: हाँ, रोकड़ा चाहिए
1: उठा जदू लेके रात ने सोवा ने
0: हाँ।
1: जब तनी पिसो है जो को जेब मु काडी बोगरो
0: भाई ज्ञान के 11 जगह अब मंडी रहे अब आ 11 जी की अरविंद भाई आ देखो कम तो होनी को नहीं क्योंकि जिया जिया आगे टेम बढ़तो जा रही है ने बिया बिया ए लाभ दा सुख सुविधा का साधन जगाई और शोक जगाई बे आदमी इत्ता पाल लिया के पिसा को देख लियो तो बंगोलियो बना रखे अब पिसा रोज की आवेगा कहीं तो भी के लिए अपन खेती बाड़ी भी करनी है अपन पशुधन को काम भी करण है अपन दूध बेचनो घी बेचनो छाना बेचना थेपड़ी बेचनी नयो पशुधन तैयार करनो सब्जी को काम करनो बिक सागे सागे जिया बागवानी का कोई फलदार पौधा ही फूल आरा पौधा ही भी लगावा अरे अपन ने अरविंद भाई कई गांवड़िया में जावा जिया ब्याह शादी में बरात में तो जानो ही पड़े तो मिठड़ियों पानी जटे नहरारो आगे ने तो बटे गरागा मां बांध बांध का गुलाब का पौधा लाग रही अरे यहाँ जी करेगा जाना फोटो खेच लिया तो थे जानो के अब नवाचारी तो ही है कोई भी शुभ काम हो आप बाजिए जाओ रे चूर जाओ 1 किलो फूल लियाओ गेंदे का गुलाब का लियाओ इतनी माला लेनी अरे जे बाई चीज आपने घर रह है।

0: थई तापड़िया होने की जरूरत कोनी जो जरूरत है भी टेम तोड़ो बढ़िया ताजा माला बनाओ चे पूजा पाठ करे भिगमा चढ़ाओ चे कोइन दियो एकदम चार मेर बल्ले बल्ले तो नवाचारी है बिग सागजिया मिठड़ियो पानी जठा आ गयो। अब कई किसान जगह देख लियो ते भांत बांध का जगह फड़ांगा रूख है बे लगा रखे तो बे देख लियो ते एकदम बुम्बाट पाड़ रखी है दिन के उठाज बिको ऊपर है तोता अरे कोयल जगी ने बे देखो बड़े ठाठू रहे अरे एकदम भांत बांध का टेम सारो देखो के सुनावे गीत बे आपकी भाषा का मायने है अरे किसान जगाई बे देखो बांगे पीण वास्ते प्रिंडा जगाई मा दरखतांग ऊपरी लटका दिया है तो बठे वे कोई फल लागेड़ा मांगे टांच मार मूर के आपको पेट भर ली पानी की व्यवस्था बठे होगी। तो बा देखो के एक पक्षी के लिए तो वो काम है जो बढ़िया हो गयो गर्मी के टेम में नया रूख घर लगाएड़ा है या खेत में लगाएड़ा है तो भी जगह किसान बन सीखने भी मिल रही है खान वास्ते चीजा मिल रही है
1: खान खातर है जो बन फल मिल रही है। सगे सगे आप हर बार आपने हर कार्यक्रम के मायने एक संदेश दिया
0: हाँ।
1: के भाई प्रकृति के ऊपर जीता ज्यादा हो उसके बीता पेड़ पौधा लगाओ तो हरियाली भी बढ़ती जा रही है
0: ठीक बात है।
1: तो एक पन तू कई काज हो रहे
0: हैं
1: और भाई कई काज होने को मतलब ही नवाचार है। अब आप देखा के पुराने टाइम के मायने दूर दराज का जगह खेत आने बांके मायने किसान बहन भाई जगह एक फसल लिया करता
0: ठीक बात है
1: और कोई साधन आस पास हो तो को नहीं और गांव है जो गड़ो पानी को बरकी और बीती दूर कई कोसा जो खेत हो तो ले जानो पड़तो
0: कुएं पर ले जानो पड़तो जो कुएं जो लाल हो जाता
1: और अब देखा के सोलर जका इन्हें बहु बठे फुहरा चले
0: सा
1: और किसान बहन भाई इंज का खेत का मैंने बना किया आपकी ढाणी दोनों फसल ले ली और भी कह सगे सगे और जका नवाचारी ही बबी आसानी करन लाग रहे
0: भाई आसानी करे नहीं तारा जो दिन छिपे देखो रोटी टुकड़ो बनावे किया के चालने की व्यवस्था होगी बांगे चौकी देखो लट्टू लगाए रखे धोलिया और बैठे तारा देखो किसान महिला एक आपको रोटी टुकड़ो बनाओ कने रेड़िया बाजे बैठे पे तो परिणिया नहीं सुने खेतां का मायने तो थे जानो के ए नवाचार का ही तो देखो के जगह सुपरिणाम ही और किसान भाई देखो के तरह तरह की जगह नई जानकारी और मिले तो बाहू भी फायदो उठा रही है कृषि विज्ञान केंद्र है वह भी देखो के नवाचार कर रही तो वह आपकी नई नई खेती कोई बीज को बोडे को कोई और कीड़े कांटे के बारे में जानकारी हो तो वे भी देखो अखबार हम सब पे है अठे आपने आकाशवाणी में आवे वार्ता भेंट वार्ता दे के जावे आप कार्यक्रम के माध्यम से देखो आपने किसाना भाया तक पूजा और फिर वह देखो कह बा चीजा देखो खेती काम में ले तो ब्यू भी देखो कह नवाचार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे और आप भी चाह रहे हैं सरकार भी चाह रही है भाई किया न किया अपना जगह किसान बहन भाई बाकी जीवन में खुशहाली आवे क्यों के किसान का जगह टब रहे बेटा ही भाई रोज तो कोने पड़े रोज की भाई इन्हें भी ने जा कोई ग्रह ब्याह शादी हुए तो बे भी चावे बाको भी जीक रहे के फूट रहा चोखी तो पैंट सिमावा अरे चोखो ऊपर बुसवेटियो सिमावा चोखो एक तोलियो ले आवा जो सिर के बाल लिया ताड़ो कौन लागे अरे चोखा देखो रोज की तो कौन पैर के अपने बूट भी देखो पहने को जी तो कर ही है किसान के टाबरा को वे भी चाहेंगे पढ़ लिख के आप भी देखो के नौकरी लगा या कोई बढ़िया काम करा पढ़े आंके सगड़ा के लिए देखो के पीसा चाहिए और पीसे के लिए आप जगह नवाचार है तरह तरह का जगह खेती बाड़ी का सब्जी को पशुपालन का जगह काम है वे अपन मन लगा के करना ही ताकि आप भी देखो के जी समय की कदम ताल है भी के सागे मिलके और आपनो जो को जीवन है बिन चोखी तरिया आपा अर टेम पास है जो को कर लेवा बातचीत तो आपा और भी करांगा पर सुजान सिंह खींची की आवाज रमाई एक लोक रचना किसान बयान और

0: मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे गिरधरे जादू कर गयो रे। अभी आप सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज रमाई लोक रचना सुनी और अपना किसान भाई जगाई बे रेडियो का माध्यम देखो कह आलोक रचना सुनी। अरविंद भाई रेडियो जो कह इका तीन उद्देश्य है, सूचना शिक्षा और मनोरंजन। अब मनोरंजन आप करवा दियो किसान भाई को, कोई किसान खेत में बैठे है, कोई गिल्लम है, कोई गरा बैठे है, कोई आंगने में बैठे है, कोई छात पर बैठे है, कोई गाड़ी में साध रहे है, तो भी देखो रेडियो लगा रखे है। लेकिन बात तक अपनी जगह पूछ है बात देखो है और आपने कार्यक्रम ने सुन रही, पर बात रेडियम कृषि की आवे तो आप देखा के खेती बाड़ी का जगह कार्यक्रम है, विशेष करके चाहे वो आपने जिया किसान वाणी है या खेती और गृहस्थी है, तो रोज की देखो के बदलवा जगह विषय ही बांग ऊपर बदलाव आप करा और बूंद बूंद देखो के घड़ो भर है के खेतीबाड़ी का काम आप करसिया क्योंकि किसान ठहरिया खेतीबाड़ी की बात उसी वार्ता सुनावा भेंट वार्ता सुनावा या फोन इन प्रोग्राम जगह हुए तो वे आप सुना तो बम जगह एक्सपर्ट आवे तो वे खेतीबाड़ी के बारे में क्या छोटी छोटी बारीकी की जगह बात बतावे जिकी आपने खेतीबाड़ी के देखो के बहुत ज्यादा फायदो करे। तो आप रेडियो देखो सुनो चाहिए नियमित रूप सुनो चाहिए तो बीसू आपने खेती बाड़ी का जगह काम है कृषि तकनीक जिकी है भी कमा के ही। अभी आप थोड़ी देर पहले नवाचार की बात कर रहा तो नवाचार इन्हें भी जगह कृषि विज्ञान केंद्र में हुए वह देखो को वार्ता भेंट वार्ता के रूप में देने वास्ते आपने आकाशवाणी केंद्र में हुए आकाशवाणी फिर जिकी है भाई रेडियो के माध्यम से देखो के किसाना तक भी बात ने पहुंचा है। तो कुल मिला के वो आगू आगे जो एक प्रकार को किया वो सर्कल बनेड़ो है तो ब्यों के बा बात है बा नवाचार है बा तकनीक जिकी है बा ठेठ आपने किसान तक है और किसान की भाषा में अब आपना जगह किसान वाणी को कार्यक्रम है या खेती और गृहस्थी है तो बा आपा जिकी बात कवा बा ठेठ एकदम देहाती लहजम कवा ताकि अनपढ़ अनपढ़ जो किसान है भी कह भी एकदम सोखी तरिया वह बात है जिकी समझ में आ जावा। इस खातर आपनो भी यो प्रयास रहे के फूटरी फूटरी बढ़िया बढ़िया जिकी बातें है वे आप किसानों ने बतावा ताकि वह बातों को भरपूर जो उपयोग है फायदो है वो अपना किसान भाई उठा सके।
1: भाई वक्त वक्त के ऊपर है अपना जगह कृषि विशेषज्ञ ही जगह भी बतलावन खातर है अपने कार्यक्रम के मायने पधारे और बह के आस पास का जो का जिसी भौगोलिक बसावट जकी है ना और जिसी माटी जिसी है खेता की भी वो अच्छी तरीके वाकिफ हो और अपना जो का किसान मैन भाई ही जो का फोन इन कार्यक्रम के माध्यम वो आपका जो की सवाल जो का हुए बह करे और बंक को सही तरीके उनको निस्तारण जको है ने और बन चोखी राय जकी है ने बे अपना जका विषय विशेषज्ञ आईडा मैंने बे बन देवे
0: देवे सा
1: और देखो के अपा हर कार्यक्रम के मैंने कदे कोई योजना के लिए कदे कोई योजना के बारे में अपा भी

0: बतलावन करता रहा और भी के सग सगे मौसम की है आने वाले दिना के महीने है जो के तरीके को मौसम रह सके।
1: हाँ।
0: तो अपना किसान बहन भाई जिका के सावधानी रख सके।
1: हाँ हाँ।
0: तो रेडियो कठन कठे खेती के महीने कारगर है और
1: भाई
0: बिके सगे सगे सऊ जुको फायदो जुको खेती के महीने रेडियो जुको कर रियो है।
1: हाँ।
0: वो के आप स्टूडियो के महीने बैठिया कोई भी योजना या आने वाले टाइम के महीने फसल के महीने के रोग हो सके के सावधानी बरत सका के आपन सावा चेती किया आपन बीज खरीदनो है।
1: हाँ।
0: किया आपन के चीज करनी है
1: जी।
0: मैं सारी चीजा दूर दराज जका खेतां के महीने डाड़ियां के महीने जका किसान बैठे ही ने।
1: हाँ हाँ।
0: बा तानी सीधी की सीधी है जको बाकी भाषा के महीने।
1: हाँ, सरल भाषा रे माई
0: समझने के महीने आसानी हो बा चीज मिल जाए।
1: हाँ।
0: तो आपा अपने अठे स्टूडियो के महीने बैठ की जकी बतलावन करा।
1: हाँ हाँ।
0: बा ठेठ है जको गांव के महीने दूर खेता के मायने जकी डाणी के मायने बैठो जको किसान सुन रियो है।
1: हाँ।
0: भी तणी बा पूछ रही है।
1: हाँ हाँ।
0: तो आगो आगे जको नवाचार या कोई भी योजना के बारे में जकी जानकारी है बा ठेठ अपने किसान तणी है जको रेडियो पूछे।
1: अच्छा, एक थोड़ी बात और है के जिया मोबाइल तो आजकल हरेक किसान के कन है और मोबाइल के माज को ऐप आ गयो ने न्यूज ऑन AIR। तो यू किसान जो को ऐप वो देखो के जको जी करे ने वो स्टेशन लगा के खेती बाड़ी का कार्यक्रम सुनो क्योंकि आपने तो मूल जो उद्देश्य वो है का आपने ज्ञान का माज ज्यादा में ज्यादा इजाफ हो है, है? अब भाई जितना ही आपने आकाशवाणी केंद्र है तो भाई मोबाइल का माँ वो देखो के ऐप है जो आप डाउनलोड कर लियो और जद जी करे कभी चूरम जिया प्रसाई तोड़ना रो खेती और गृहस्थी है किसान वाणी वो सुन लियो और पेट टेम मिलियो तो आप देखो के नके का जगह स्टेशन का कार्यक्रम सुन लिया के भाई बह किया बोल रही कि ताक फूट रहा बोले कि शाग लोकगीत लोक भजन सुनावे खेती बाड़ी का माँ बह के बात बता रही। तो आपने जी फायदे की चीज है वह अपन देखो के वहा केंद्र भी कार्यक्रम सुन के और आपनो जो ज्ञान है वो बढ़ानो चाहिए। तो कुल मिला के आप कैस कहा के रेडियो का जो तीन उद्देश्य ही सूचना शिक्षा और मनोरंजन। तो बे देखो के रेडियो की शुरुआत 1936 हुई 90 साल जगह ही बे पूरा हो गया। अब 90 साल की आज की लंबी यात्रा है एक मा देखो के रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहली भी आज भी है और आगे भी रसी क्योंकि क्षेत्रीय जगह कार्यक्रम हुए लोकल भाषा का जगह कार्यक्रम हुए बाग मां अपन की बात बतावा बिन चौकी त्रिया और आज की श्रोता जगह ही बे सुन के और बिगो मोकलो फायदो जो है वो बे उठावे। तो अब देखो के लगे हाथ एक मुरली राजस्थानी की आवाज रमाई लोक रचना और सुना देवा।

0: हाँ तो किसान भाया देखो के अभी आप मुरली राजस्थानी और साथियों की आवाज रमाई आ लोक रचनाथ जी सुनी और उम्मीद करा के किसान भाया आज की बातें थाने बताई भी प्रति गौर है जो जरूर करियो और नित बड़ी है देखो के नियमित रूप अपना जगह कार्यक्रम में बैठे सुनता रहा करो और विश्व जुगो थारे ज्ञान में इजाफ हो बिको देखो खेती बाड़ी में प्रयोग करता रहो काल देखो के आपनों जो को खेती और गृहस्थी कार्यक्रम में बिकमा चर्चा होसी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में और दूसरी चर्चा को विषय रसी मूक प्राणी हेतु जल प्रबंधन इसके अलावा लोक गीत और लोक भजन मौसम की जानकारी जिके बाबी थान दी जैसी और आज जो को तावड़ो पड़ियो बिनो काल जो को देखो के तावड़ है जो को तेज पड़ेगो तो ई खातर है किसान भाई ई बात को भी ध्यान रखेगा कि आज यहाँ टेम्परेचर जो है वो 42-43 डिग्री तक हो काल टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक जागो इस खातर कार्यक्रम की शुरुआत में जगह था उपाय बताया वह देखो के अपनाना ही वो ध्यान रखो अब आपने जो को कार्यक्रम खेती और गृहस्थी वो 28 तक है ओजु मिलने तक गोपाल भाई ने
1: और भाई अरविंद ने देव सीख
0: करा राम राम, राम।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज, प्रतिज्ञा फिल्म का ये गाना, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, किशोर देवतावर के साथ।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफीक की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत, ओपी नैयर का संगीत।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज आसपास फिल्म का ये गाना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: पहले तुम।
1: लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह की आवाज, बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
2: पहले आप घर से निकल गई थी उस तरह हमारी, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा, मैं कहती हूँ

से बदली, सावन से बदली, फूलों से तितली, दूर रहे तो दूर रहे।

0: चंदा से चकोरी, पतंग से डोरी, दूध है तो दूध है। पर तुम ना रहना दूध हो सनम।
1: लैला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यही समाप्त होता है। FM 100.7 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हैं आकाशवाणी चुरू के साथ। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यवसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के

223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मांगीलाल पुजारी और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। इसका प्रसारण आकाशवाणी चूरू से किया गया। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गए। आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कनेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी। लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: और मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
4: अच्छा,
2: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
4: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
2: मेरी शादी नहीं हुई है।
4: क्या?
2: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं।

0: से ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
1: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
0: कई वर्ष हो गए।
1: आपके बहुत मित्र हैं?
0: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
1: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, एलएसडी आदि का सेवन करती हो?
0: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, वो सारन का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
1: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
0: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
2: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज की शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
1: आती हूँ।
3: बाहर अभी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
4: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
1: ये मेरी डायरी है।
4: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
4: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
3: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो।
4: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
4: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
4: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
4: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
4: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
4: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता, बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज है ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
4: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती, दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
4: गणित, विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता, छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
4: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
4: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप, आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं, तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूदित के साथ बहुत रहे हैं।
4: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times, लेकिन वहाँ गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडित को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
4: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
4: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
4: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
4: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
4: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
4: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
4: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
4: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
4: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही है। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती है, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने।
4: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
4: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
4: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
4: प्लीज
1: मत, तेज पुंज है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
4: देखो,
1: ये दलीलें अब्बासी होती
4: हैं। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या
4: है। मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ उसे क्षण होकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाते हो या नहीं?
4: सांत्वना।
1: कौन है? क्यों आए हैं इस समय?
5: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
5: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
5: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
5: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
6: मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
5: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
6: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
4: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: में कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछू?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
1: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
1: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
1: शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
1: ये छद्म है, छद्म

मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर

0: कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसे मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छत इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
3: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
3: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
3: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
4: कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
3: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
3: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगीत मिला, शायद खराब था।
3: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
4: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
3: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
5: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
3: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? कैसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
6: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
3: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
6: सांत्वना, हमें लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
3: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
6: तुम शादी कर लो।
3: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
6: धोखा तुम आप दे रही हो।
3: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
6: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनू?
3: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
3: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
3: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
3: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे।

0: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
0: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
0: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
0: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
0: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सके।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
0: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
1: मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और माथा, ओह ये माथा तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
2: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
0: निगम इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
2: वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
2: ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। तो सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
0: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है?
3: मैं यही उतरूंगी।
4: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
3: बड़ी सुंदर जगह है ये।
4: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
3: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
4: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
3: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
5: जी अभी आया।
4: लाइए, मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
3: ये लीजिए।
4: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ। खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले। क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

रूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरी मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप
1: महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण
0: प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
2: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chaliskal, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Varkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर

0: रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर